0: आप रहते हैं शो में जिसका नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे, हम हैं आजाद, आप हैं आजाद और लब हैं आजाद। और आज लिसनर शो का तीसरा पार्ट आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं जनाब, और बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स के साथ बहुत अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं। जैसे आपसे वादा किया था 2025 जो है इसमें बहुत मज़े मज़े की खबरें आप लोगों के लिए आ रही हैं। बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा कि हम पसे पर्दा जो हैं, बिहाइंड द सीन जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं ना आजकल, उसमें हम क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, रेडियो आज़ाद पे क्या हो रहा है, रेडियो आज़ाद के आने वाले इवेंट्स के बारे में छोटी छोटी चीज़ें और बहुत अच्छी अच्छी मज़े की चीज़ें, जिस काम के लिए रेडियो खुला था उन चीज़ों की तरफ आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई कह रहा हो कि हम उनके पास जाते थे मगर आहिस्ता आहिस्ता। 972-501-9390, वो लोग जो बम्प इनटू जाते धड़ल्ले से जाते हैं जज्बात में और अगले बंदे से टकरा जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हाथ मिलाया है, गले मिले हैं या टकरा गए हैं, उन लोगों के लिए नहीं है ये, स्लो एंड स्टडी विंस द रेसेज, ठीक है। सो नंबर है स्टूडियो का 972-501-9390 और व्हाट्सएप का हमारा नंबर 972-741-3883। देखते हैं कौन है आज हमारे साथ पहले कॉलर ऑफ द डे। रेडियो आजाद यू ऑन द एयर।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं? एनर्जी से
1: भरपूर आवाज। चले तो क्या है, कट जाएगा सफर आहिस्ता,
0: कट ही जाएगा सफर,
1: कट ही जाएगा सफर
0: आहिस्ता आहिस्ता।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और कदम उठाते रहने हैं हमने।
0: आई थिंक लेडी का नाम था मुसर्रत नज़ीर, है ना?
1: बिल्कुल, मुसर्रत नज़ीर ने बड़ा खूबसूरत ये है, आप इसको गजल कह लें, गीत कह लें, जो भी कह लें, लेकिन इट वाज वन ऑफ द बेस्ट।
0: और उस जमाने में ना, उस जमाने में नाहिद अख्तर थी, नूर जहां थी, मेहनाज तरन्नुम नाज थी, मेहनाज थी, और उसमें एकदम एक मॉडर्न सी एक लेडी आई, बाल उन्होंने पीछे की तरफ किए हुए, कनाडा का ये स्टाइल तो लोगों को बहुत पसंद है, और फिर वो गाना इतना अच्छा था कि हर आशिक की जुबान पे था।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। आज के दिन में सवालात ये पूछूंगी दो, कि हम पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी से रिलेटेड में अगला, मतलब इसको सीक्वेंस में पूछती हूँ, कि हम ये कहते हैं कि जिंदगी में जो हमारी थॉट्स हैं वही जिंदगी का हमारा निचोड़ बनता है, कि जिस तरफ आपकी सोचें आपको ले जाती हैं, रास्ता वही, मंजिल वही होती है। तो विजुअलाइजेशन की टेक्निक या पॉजिटिव थिंकिंग के असरात जो है इतने गहरे हैं कि अगर हम सोचें कि अपने सोच का धारा बदल दें तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन दुनिया में करोड़ों की आबादी में क्यों हमें ये सब कुछ पता होते हुए हम सोच का धारा, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हम करते हुए भी अपने गोल्स क्यों नहीं अचीव करते, और कहाँ हिंड्रेंसेस, कहाँ रुकावटें डालते हैं कि वो चीज़ हो नहीं पाती?
0: देखिए, इसमें से पहला तो बड़ा सिंपल सा कट टू द चेस जो जवाब है ना, वो ये है कि हम ये चीज़ें चाहते ही नहीं हैं। हम चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते। किसी चीज़ की ख्वाहिश होना, किसी लोगों की देखा देखी किसी चीज़ को चाहना, दिल में उमंग पैदा होना और उसकी चाह रखना, ये एक और बात है। फिर उसको प्रैक्टिकल दुनिया में ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए उसके लिए कोशिश करना, उसके लिए प्लान बनाना, उस प्लान में रास्ते में आने वाली जब हर्डल्स होती हैं उनको डील करना, जब ये हम सारे काम नहीं करते तो इसका मतलब है हम ये चीज़ एक्चुअल में चाहते ही नहीं। क्योंकि अगर हम चाहते तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर हम रियल में कोई चीज़ चाहते हैं तो फिर जितना मैंने आपको ये सीक्वेंस बताया है, फिर हमारी नीयत, हमारे अल्फाज, हमारे एक्शंस और हमारे रिजल्ट्स, ये सब एक जगह पे कोइंसाइड करने चाहिए, कन्वर्ज करने चाहिए और रिजल्ट आते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब इसमें लोग कहते हैं जी कि रास्ते में जब हर्डल्स आती हैं, मुश्किलें परेशानी आती हैं, तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ द प्लान। प्लान जब आप बनाते हैं तो जज्बात में आकर नहीं बनाते, उसमें तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ देखी जाती हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, सब देखी जाती हैं। फिर इनसे लड़ेंगे कैसे? आपके पास अभी है क्या, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या एनर्जी है आपके पास, क्या गिफ्ट है आपका, किस किस्म के दोस्त हैं आपके, किस किस्म का एनवायरनमेंट है आपका, इससे बाहर निकलकर अगर बेहतर बनाना है, जो है इसको साथ इस्तेमाल करना है और जो चाहिए उसके लिए काम करना है। जब ये सारी चीज़ें इस तरह सीक्वेंस में बन जाएंगी और आपके जहन में जो इमेज है वही आपका गोल होगा। कभी कभी ना ये टनल विजन थोड़ी सी कर लेना किसी चीज़ को पाने के लिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आप फोकस रह सकें और आप ब्लाइंडेड ना हो सकें और उस हाउलिंग की वजह से डर ना जाएं जो दुनिया आप पे कर रही है, ताकि आप स्टेटस को मेंटेन करें। ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए अपने थोड़ा सा जो आउटवर्ड की जो वर्ल्ड है उसको ब्लॉक करना पड़ता है और काम की तरफ लगना पड़ता है। आगे जाकर फिर आपको सब चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपने बेसिक पे काम कर लिया है। लोग आपको शुरू में ही रोक लेंगे, एक क्रिएटिव प्रोडक्टिव थॉट, स्टेटस को कोई चैलेंज करने वाली चीज़ शुरू में ही आपको रोक लिया जाएगा, और अगर आप उस वक्त थोड़ा सा प्रेशर हैंडल कर लें और एक एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जैसे डबल डस्ट प्रूफ फैक्ट्रीज में एमिनेशन और चीज़ें बनती हैं ना, उस तरह अगर आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लें अपने अंदर, एक बबल के अंदर अगर आप बैठ कर कोकून में ये चीज़ डिवेलप कर लें शुरू में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बाहर निकालें, और उस वक्त बाहर निकालें जब एनवायरनमेंट साजगार हो, और तो फिर आपको इतनी आगे से जो हर्डल्स ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस जो है ना वो इतने शदीद नहीं होते। लेकिन कुछ लोगों को एकदम ही सत्य का ज्ञान होता है और वो हथौड़ा लेकर निकल आते हैं बाहर, और उसके बाद यू नो लड़ाई मारामारी में सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, उसमें जितने रिश्ते होते हैं वो भी ख़िलाफ़ हो जाते हैं, जो स्ट्रेंथ होती है दोस्तों की वो भी आपके ख़िलाफ़ हो जाती है। तो इसको स्मार्ट तरीके से मनूवर करना होता है, इसमें वियर एंड टीयर कम से कम रखी जाए, इन्फॉर्मेशन सिर्फ नीड टू नो बेसिस पे होगी, सिर्फ उन लोगों को जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त, जिनका इंटेग्रल पार्ट है इस चेंज को लेकर आने में, चाहे वो पर्सनल है या फिर उसमें और लोगों की ज़िंदगी में भी है, जैसे कलेक्टिव लेवल पे भी है चीज़, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप आगे लेके आएंगे तो मैनिफेस्टेशन जो है वो चीज़ों की बहुत आसान हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन तब स्ट्रांग होती है, शुरू में एक वीक आदमी जब जिम जाना चाहता है तो वो अगर स्ट्रांग बॉडी को मैनिफेस्ट सिर्फ तब ही कर पाएगा जब उसका डाइट का प्लान, उसका एक्सरसाइज का प्लान, इस वक्त जो रियलिटी में उसकी फिजीक है उसके हिसाब से स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बिल्ड करेगा। और उसके बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप बेचैन हो जाएंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके बाकी काम ठीक नहीं हो रहे होंगे, आपको जो डोपामिन सेरोटोनिन एंडोर्फिन्स की जो हिट मिलती है वो नहीं मिलती, तो अब आप जो मर्जी इधर उधर से करके आपने जिम पहुंचना होता है। ये तरीका होता है किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कराने का। शुरू में मुश्किलें जब आती हैं, न्यूरोपैथवेज चेंज करने होती हैं, तमाम एनवायरनमेंट के अगेंस्ट आपको जिम के लिए टाइम निकालना होता है, चाहे दोस्त कोई पकड़ ले उसको साथ लेके जाने के लिए मोटिवेशन के लिए, चाहे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता करते करते करते एक ऐसा वक्त आता है कि इंटरनल सिस्टम मजबूर कर रहा होता है कि आपको ये काम करें, वरना आपको सुकून नहीं आएगा, आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आप बीमार बीमार से रहेंगे। तो उससे आसानी हो जाएगी उस बॉडी को मैनिफेस्ट करना जो आपने सोची थी या ड्रीम किया था। बिल्कुल इसी तरह हर प्लान को इसी तरह प्रोटेक्ट करके लेके जाया जाता है, हर ख्वाब आपके बेटे की तरह या बेटी की तरह है। इस तरह समझाऊंगा तो बात बड़े आराम से समझ आ जाएगी। हम खुद सारे गलत काम करते हैं लेकिन बच्चों को वही गलत काम नहीं करने देते, बल्कि उनकी शुरू की फाउंडेशन ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि आगे जाकर ये वो गलत काम ना करें। बिल्कुल इसी तरह हर ख्वाब को बच्चे की तरह एक्सटर्नल इंटरनल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करके सही करके रखना पड़ता है, इसीलिए वो चीज़ स्लोली एंड ग्रेजुअली अच्छी तरह से परवान चढ़ती है और इवॉल्व होती है और वो बनती है जो आप उसको बनाना चाहते हैं।
1: सही, तो मैं जो समझी कि पहले आपने जो चीज़ें करनी है तो पहले उसको इनर अपनी वर्ल्ड में पूरा डिज़ाइन करें, उसके मुताबिक सोचें, प्लस माइनस हर तरह से पॉसिबली जितना भी कर सकते हैं उसको इंटरनलाइज करके फिर एक्सटर्नल उस पर ले आए।
0: जी हाँ, एक ये, और दूसरा ये कि कभी कभी जब बहुत सख्त आगे से मार पड़ रही हो, घर से पढ़ रही हो, एनवायरनमेंट से पढ़ रही हो, जिस जगह पे आप हो उस वजह से पढ़ रही हो, किसी भी वजह से, ना जानने की वजह से पढ़ रही हो, उस वक्त मार खाने की ना ताकत अपने अंदर पैदा करें कि कहीं ना कहीं जब भी आप बाहर निकलेंगे, जिस स्टेज पे भी आप बाहर निकलेंगे, एक फर्स्ट स्टेज पे बाहर निकल आएंगे आप तो ज़्यादा मार पड़ेगी, सेकंड पहले स्टेज पे काम करके सेकंड स्टेज पे आएंगे तो कम मार पड़ेगी, सेकंड स्टेज को अगर आप हैंडल कर लेते हैं एक तरीके से प्लान करके तो थर्ड स्टेज पे अगर आप बाहर आते हैं तो फिर उससे भी कम मार पड़ती है और उससे बड़ी आसानी से चीज़ें हो जाती हैं। तो जब भी कोई प्लान करे, हम में से बहुत सारे लोग जज्बात में मारे जाते हैं, किसी को कोई चीज़ प्रूव करने में और वक्त से पहले प्रोडक्ट और सर्विस को बाहर निकालने में, इसीलिए प्री मेच्योर कोई भी चीज़ जब आती है, इवन जब बच्चा पैदा होता है प्री मेच्योर, उसको कितनी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह प्री मेच्योर प्लान शेयर कर देना, प्री मेच्योर हाफ हार्टेड यानी जो हाफ वर्कड ऑन चीज़ों को वक्त से पहले बाहर ले आना, वो अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें और ऑब्स्टिकल ले आते हैं और उनको दूर करते करते आपका ध्यान मुश्किलात और परेशानियों पे चला जाता है और असल गोल मिस हो जाता है। तो ये भी दूसरी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है प्लानिंग के अंदर।
1: अच्छा, एक और इस पे पूछ लेती हूँ कि जब हम ये सब कर रहे होते हैं और बहुत पॉजिटिव हों और कहीं ना कहीं हर्डल्स की वजह से जब नेगेटिव धारे पे चल पड़े, फिर वापस पलट के कैसे अपने आप को ले आए, अगर आप जवाब इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे अगर कोई कॉल पे नहीं है तो।
0: जी, मैं बिल्कुल साथ साथ कंटिन्यू करता हूँ इसी बात को। ये जो आपका सवाल है ना कि जब आप किसी रास्ते पे चलते चलते एक वक्त आता है जब नेगेटिव धारे पे चले जाते हैं, देखें ये तब होगा जब आप लॉज ऑफ यूनिवर्स के साथ अलाइंड नहीं है। कहते हैं ना पावर, आई थिंक लॉर्ड एक्टन था जिसने कहा था कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। पावर सिर्फ पावर के लिए आपने नहीं हासिल करनी है, पावर आपने चेंज के लिए, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के लिए, प्रोडक्टिव होने के लिए आपने पावर अगर ली है, तो उस पावर का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा उस पावर को किसी ना किसी के अंडर रखना होगा। और दुनिया में अगर आपको कोई नहीं मिलता तो यूनिवर्सल लॉज है, रब ने आपको बताया हुआ है कि नीयत, उसमें भलाई होना, अच्छाई होना, दूर रस नतायज, जो यू नो फोर साइटेडनेस लोगों के लिए अच्छी चीज़ उसके अंदर होना। अगर आप ये कोई सिस्टम आप ऐसा बनाना चाह रहे हैं जिसका कोई मकसद है, ये जब आप तमाम चीज़ों के साथ उसको अलाइन करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि विजन किस तरफ जा रही है, कहीं आप जो भी उसके साथ पर्क्स आ रहे हैं या जो फैसिलिटीज़ उसके साथ आपको मिल रही हैं या जो भी पावर आपको साथ साथ मिल रही है, एक्चुअल में वो मकसद नहीं था, वो सब बाय प्रोडक्ट है। अपनी चीज़ को, अपने काम पे ध्यान रखना है कि उस प्रोडक्ट को या सर्विस को निखारते रहना है एक्सेलेंस की तरफ। उससे आपको ना कभी प्राइड की उसके अंदर फीलिंग आएगी जिसमें आप मारे जाते हैं, जिसमें ईगो का कभी मसला आपको, फॉल्स प्राइड या ईगो का कोई इशू नहीं होगा। इसमें लोग जो कुछ भी कहते रहे, एक वक्त लोग आपके खिलाफ थे, अब लोग आपके साथ आ जाएंगे। जब पावर ज़्यादा आती जाएगी, कोई काम बढ़ता जाएगा, फिर लोग आपके खिलाफ भी होते जाएंगे। कुछ अंदर से खिलाफ होंगे, कुछ बाहर से खिलाफ होंगे। इस तमाम को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस फाउंडेशन के ऊपर वो चीज़ बनी है, जिस बिलीफ के ऊपर वो चीज़ बनी है, उसको इंटैक्ट रखना है और उसको मजबूती से थामे रखना है। ये अगर आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर भी आप काम करना चाहते हैं, ये उसके लिए भी इट होल्ड्स गुड। ये आप ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अगर काम करना चाहते हैं उसके लिए भी है। ये आप अपनी फैमिली पे काम करना चाहते हैं उसके लिए भी है। और आपने कोई मकसद ज़िंदगी में अचीव करना है, कोई बड़ा काम ज़िंदगी में करना है जिसके बहुत सारे लोगों पे इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसको भी आपने अलाइंड रखना है अपनी फिलॉसफी के साथ, जिसको पहले दिन आपने शुरू किया था, और आहिस्ता आहिस्ता उसको सीमेंट करते हुए बेहतर से बेहतर करना है। और जो भी चैलेंजेस आएंगे उसमें हमेशा याद रखना है कि निकले किस मकसद के लिए थे, करना क्या था। अकेले थे तो तब क्या मकसद था, दो तीन लोग थे, फैमिली में दो लोग थे तो उनका क्या मकसद था, गोल क्या था, उसको सामने रखना है। अपनी अपनी में नहीं पड़ जाना, इसीलिए कलेक्टिव गोल्स जो है ना, और हमारा माशरा, हमारी कम्युनिटी, जिस दुनिया से हम आए हैं, उसमें इंडिविजुअल सक्सेस तो बहुत लोगों को मिल जाती है, कलेक्टिव नहीं मिलती है, क्योंकि उसमें टुकड़े टुकड़े हो जाना, उसमें पॉलिटिक्स डाल देना, उसमें जज्बात और इमोशंस और अपनी इनसिक्योरिटीज़ और कॉम्प्लेक्सेस बंदों के डाल देना, ये कहानियाँ सारी दुनिया की सारी फिल्मों में वहीं से बनती हैं कि एक आध विलन कहीं से एक इमोशन विलन बन जाता है, कोई एक बंदा विलन बन जाता है, कोई एक एनवायरमेंट विलन बन जाता है, और आप उसी के खिलाफ स्ट्रगल करते करते अपनी सारी एनर्जी, फिर दो ग्रुप्स बन जाते हैं। ये ग्रुप्स विद इन अ ग्रुप कभी भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए म्यूटनी करने वाले को किताब के अंदर बताया गया है कि उसकी उसको आपने माफ़ नहीं करना, सख्त तरीन सज़ा होती है, क्योंकि इस तरह फिर और लोगों में भी ये चीज़ें पैदा होती हैं। लेकिन आप इन्वायरमेंट ऐसा बनाएं कि उसमें कम से कम म्यूटनी और ग्रुप्स और यू नो आपस में ये मामलात पैदा हों, और इस किस्म के जो भी बंदा या इस किस्म के मामला जो आपकी फ़िलासफ़ी से अलाइन नहीं है, उनको शुरू में आपने बाहर निकाल के साइड पर रखना होता है, चाहे जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए। क्योंकि नुकसान सिर्फ एक होगा, अगर आप फ़िलासफ़ी से हट गए, मिशन स्टेटमेंट से आप अपनी हट गए, और जो आगे आपने देखा हुआ था उस मकसद से अगर आप हट जाते हैं, किसी भी की मोहब्बत में, किसी के फेवरेटिज्म में, या किसी की ज़रूरत के तहत, तो आगे जाके फिर नुकसान हो जाएगा आपको। तो इसीलिए मकसद किसी भी चीज़ का प्राइम इम्पोर्टेंस का होता है। रिश्ते की सोल, जो भी आपका रिश्ता है, उसकी सोल से आप जब तक हट जाएंगे, तो कि जितनी मर्ज़ी मोहब्बतें, इज्जतें और कहानियाँ आप लेके आएँ, जब तक वो सोल मिसिंग है, इंसान की बॉडी में जो कुछ हैं, केमिकल्स, एलिमेंट्स, यू नो मिनरल्स, जो कुछ भी आप सब का सब भी ले आएँ, सारा कुछ एक जगह जमा भी कर दें, जितनी मर्जी साइंस लड़ा लें, रूह आप नहीं फूंक पाएंगे उसके अंदर। तो रूह जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। रूह चाहे इबादत की हो, रूह चाहे रिश्ते की हो, रूह चाहे मोहब्बत के अंदर हो, रूह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की स्पिरिट में हो, हर चीज़ रूह पे खड़ी है। और बाकी सब का सब जो है उसको साथ लेकर चलना और उसको प्लान करके उसको रूह, स्पिरिट ऑफ द मिशन के साथ चलना होता है, वरना कोई भी चीज़ एंड तक नहीं पहुँच पाती।
1: सही, बिल्कुल। पॉजिटिविटी और
0: मेरे साथ रहेंगी, मेरे साथ रहेंगी। आपका दूसरा कॉल होल्ड कीजिएगा। हमारे साथ जनाब एक मेहरबान हैं, उनको भी हम लेते हैं, बड़ी दूर से हैं, उनको भी ऑन एयर लेते हैं हमारे साथ। वीडियो आजाद, यू आर ऑन द एयर।
2: नमस्कार जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जी।
0: सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, ठीक हो?
2: बिल्कुल बढ़िया सर जी।
0: तुहानू बोर ते नहीं कीता पिछली कन्वर्सेशन दी, समझ आ रही सी?
2: आ रही सी सर, लाइक और धीरे धीरे ये चीजें मैं रिलेट भी कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ अपने साथ, बिकॉज अब मैंने महसूस किया है कि अंटिल अनलेस आई मीन टू डू समथिंग आई शुडन्ट डू इट, एंड नाउ आई स्टार्टेड डूइंग थिंग्स बाय एक्चुअली लाइक यू नो, अभी मुझे लगता है कि मुझे ये चीजें करनी चाहिए, मुझे महसूस हो रहा है तो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी भी लग रही है। पहले मैं सिर्फ कर रहा था, उसमें ये डिफरेंस आ रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था. आई वॉज गेटिंग कंफ्यूज एंड आई वॉज वेस्टिंग टू मच टाइम थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड इन रियलिटी वो मेरे हेड स्पेस में ऐसे मुझे कंफ्यूज कर रही थी कि जैसे दे एक्चुअली एग्जिस्ट बट दे डोंट एग्जिस्ट, इफ यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से.
0: या उसके लिए आपका ना सिंपल तरीका है जो कि आपको करना है, जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं और एक सोच में एक ऐसा लेवल आ जाता है जहां सोच गोल दायरे में घूमना शुरू हो जाती है या उस सोच के गुंजल बनने शुरू हो जाते हैं, आप स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है या आपको लगता है कि मैं फंस गया हूं, मैं इससे बाहर नहीं निकलूंगा, तो उसी के लिए बोल क्लब आज़ाद है तेरे को आपने यूज़ करना है. बहुत सारे लोग जिनको मैं कहता हूं, आप जिस सफ़र में हैं, अगर ये सफ़र नया है तो रास्ते में आप मैप देखते हैं, रास्ते में आप गूगल करते हैं, ये तमाम चीज़ें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन को सेट करने के लिए होती हैं, बजाय इसके कि आप परेशान हो जाएं, आपने जैसे गूगल मैप्स निकाल के रास्ता ले लेते हैं. बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में भी जब आप कुछ सोचने लगते हैं, जब आप सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पर होते हैं, इसमें कुछ चीज़ें नई होंगी, कुछ पुरानी होंगी, कुछ चीज़ों को शुरू में अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आती है, कुछ एंगल्स मिसिंग हो जाते हैं, तो उसमें जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे बिल्कुल आपने अपना जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उसको उठाना है और उसको शो में लेके आना है और उस शो में हम वो गुंजल भी खोलने की आपके साथ कोशिश करेंगे. और बहुत सारे लोग जो ये सब सोचते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके उसमें से बाहर निकलना है आपने, तो ये आपने करना है. तो जो भी गुंजल बनेगा, जहाँ पर भी कोई परेशानी होगी, जहाँ पर भी लगेगा कि आगे कोई रास्ता नहीं है, वहाँ से ही एक्चुअल में रास्ते मिलते हैं. सिर्फ उसको देखने का एक तरीका होता है और उसको जब आप मकसद से अलाइंड करते हैं, रिजल्ट्स को सामने लेके आते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल वहाँ पे जहाँ एक दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ 10 दरवाजे खुले होते हैं, उनमें से आपने एक लेना होता है और उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो फिगर आउट करना होता है इसकी क्या पैकेज डील है, फिर आप वो रास्ता लेते हैं. उसमें आप कम्फर्ट भी आपको मिलती है और उसके जो चैलेंजेस होते हैं उसका भी आपको पता होता है कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है. ठीक हो गया.
2: और मैंने इस दौरान मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि जब मैं ऐसे गुंजलदार सोचों में फंस जाता हूँ ना, तो मोस्ट ऑफ द थॉट्स आई गेट दे आर नेगेटिव. सो अभी मैंने अपने आप को और पहले मैं उसके बारे में सैड हो जाता था लाइक ये सोच सोच के, बट नाउ आई स्टॉप डूइंग दैट.
0: अच्छा, आपने काम, अभी आपने काम करना है, ये जब आप सोचते सोचते एक जगह पे पहुंचे जहां आपको लगे कि सोचों के गुंजल बन रहे हैं या एक विशेष साइकिल में आप फंस गए हैं, तो और आपके जो भी थॉट्स उसके बाद आपने कहा है जो इनिशिएट करती हैं या आपको घेर लेती हैं, वो थॉट्स हैं जो नेगेटिव हैं. तो आपने समझना है वो जानबूझ कर नहीं आ रही हैं. एक तो जो कुछ आप पिछले 25-30 साल से सोचते रहे हैं, करते रहे हैं, आपके जहन का हिस्सा बन गया, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, जो आपने देखा, जो आपने सुना, जो आपके साथ हुआ, जो इर्द गिर्द हो रहा था, इन तमाम चीज़ों का मिला जुला जो रुझान है वो पहले से आपके ब्रेन में स्टोर्ड है, वो आपकी एक हद तक सोचने की पर्सनैलिटी बन जाता है. एक दूसरा, क्योंकि आप एक रास्ते पर जा रहे होते हैं तो उस वक्त जब आपको नहीं पता होता तो आप थक जाते हैं, वीक हो जाते हैं. तो जब भी आप वीक होंगे ना, तो जो भी आपको थॉट मिलेगी वो भी कमजोर होगी. थका हुआ बंदा, एग्जॉस्टेड जो आदमी होता है ना, उसके पास और एनर्जी आगे बढ़ने के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों को देखने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए वो ख़त्म हो जाती है. तो जो वीक सी एनर्जी बचती है ना, उसके मुताबिक ही फिर आप ऑपरेट कर रहे होते हैं. तो ये कसूर जो है आपका या किसी का भी नहीं है कि उसको जब वो सोचने के गुंजल बनते हैं तो वो उसमें से जो थॉट्स, इसीलिए आपने देखा होगा वीक लोग क्या करते हैं. स्ट्रांग बंदा जब लड़ाई करता है वो डिफरेंटली लड़ाई करता है, वो अगर वो जिस्मानी तौर पे लड़ाई करता है तो उस तरह करता है, अगर जबानी तौर पे वो लड़ाई कर रहा होता है किसी बंदे से, अपना आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, तो वो बड़ा सांस पे उसका काबू होता है, वो आर्ग्यूमेंट दे रहा होता है, उसको सांस नहीं चढ़ जाते या वो गुस्से से पागल नहीं हो जाता. गुस्से से किसी चीज़ में भी पागल होने की एक निशानी ये है कि आप वीकर फुटिंग पे हैं. और वीकर फुटिंग के मतलब नहीं कि आप का आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग नहीं है, उसका यह मतलब है कि अब आपको यह पता है कि यह बात 100 दफा पहले हो चुकी है और इस बंदे को समझ नहीं आई. अब आपको गुस्सा इसलिए आ रहा है कि आपको पहले से पता होता है कि इसका आउटकम क्या आना है. फिर मैं यहां मगज मारूंगा, जान अपनी जो है वो जोखिम में डाल के गुस्सा करूंगा, एनर्जी वेस्ट करूंगा अपनी, और फिर कुछ दिनों के बाद वही मामला होगा जो पहले था. तो यह आपने समझना है कि जब भी वहां पर आपको लगे कि आप एक हद, ये बिल्कुल एक्सरसाइज की तरह है, जब मैं जिम जाता हूँ ना, स्विमिंग करता हूँ, जब मुझे कभी कभी आप बहुत अच्छी एनर्जी में होते हैं, आप 50 लेंथ से उससे आगे कर लेते हैं, कभी कभी शुरू से आप यकीन करें, अगर सच में आपको बताऊँ ना, ये मैं एक शो करूँगा जिसमें मैंने आपसे कहा था आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, आपने मुझे बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं उसमें से उसी काम के अंदर से आपको पूरी जिंदगी के सबक जो है ना, जो लेसन्स हैं जो उस काम से सीख सकते हैं। कोई लेडी कहती है जी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मेरा तो कोई काम ही नहीं है। हाउस वाइफ होने में आप क्या क्या सीख सकते हैं जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा पूरी दुनिया में सब कुछ आप सीख भी सकते हैं और सिखा भी सकते हैं। कोई बंदा कहेगा मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं उसको स्पोर्ट्स से वो सब सिखा दूंगा जो पूरी जिंदगी में आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके रिजल्ट आ जाएंगे। कोई बंदा कहे मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, मैं उसमें से आपको बता दूँ। आप कुछ भी बताएं कि मैं ये काम करता हूँ जिसकी सिग्निफिकेंटली आपके ख्याल से कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हर चीज की वैल्यू है। सिर्फ हमने वो जो सीखा है जो हम रोज कर रहे हैं, अगर आप कारपेट क्लीनर भी है ना तो आप जो रोज कर रहे हैं या दुकान में किंग आप काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं किसी गैस स्टेशन पे, वो भी मुझे आप बताएं तो मैं आपको उससे बताऊंगा कि उसको कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी साफ कर सकते हैं, रिश्ते साफ कर सकते हैं, सोचें साफ कर सकते हैं, सब कुछ किया जा सकता है और ये उसी चीज से सीखा जा सकता है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं इस थॉट को छोड़ के आगे चलना चाहूंगा इस बात को कि इससे अगर रिलेटेड आगे कुछ पॉइंट्स हैं तो आप जरूर बात कर सकते हैं। हीरा सिंह जी,
2: हाँ जी सर, मैंने ना अभी
0: आप वो समझे कि वो थॉट्स कहाँ से आती हैं, वो क्यों एग्जैक्टली हो जाती हैं, वो क्यों नेगेटिव हो जाती हैं और उस वक्त आपको, हाँ ये बात जो मैं आपसे अगली करना चाह रहा था कि जब भी आपको लगे कि आप सोचने की कोशिश करते हैं आप फंस जाते हैं, आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप एंग्शियस हो जाते हैं तो, और या फिर आप नेगेटिव हो जाते हैं या इरिटेबल हो जाते हैं आप, तो आपने उस बात को वहीं पर रोक देना है या वहां से आपने अपना कोई भी फेवरेट काम है जो आप करते हैं, मूवीज अच्छी लगती हैं तो मूवी देखें, एक्सरसाइज कर सकते हैं तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं है। आपने उस थॉट को वहीं पे रोकना है कि आई विल गेट टू यू वंस आई एम डन विद ऑल दीज थिंग्स। तो जब आप कोई, या आपने किसी दोस्त से मिलना है या जहां से आपको बेहतर एनर्जी मिलती है, बच्चों से, बड़ों से, दोस्त से, कहीं से भी आपने करके वो एनर्जी इकट्ठी की, आपने अपना काम किया और दोबारा उस थॉट को आपने टैकल करने की कोशिश की, तो ये समझना जरूरी है जब मैं थक जाता हूं किसी चीज को करते करते तो मैं उस चीज को छोड़ देता हूं। ये मैंने सीखा था एक जमाने में जब मैं पूल खेला करता था और बहुत दिल के साथ मैं अपना गेम, मैंने पूल और ये जो दूसरी स्नूकर ये एक जमाने में शुरू की थी, एफएससी के जमाने की बात है, तो खेलते खेलते वो मैं अच्छे होते होते तमाम जो चैंपियंस थे उन सबको हमने हरा दिया। एक ऐसा बंदा रह गया था जिसको हराना बहुत मुश्किल था, वो बहुत सोच समझ कर, बहुत टाइम लेकर, इतने कैलकुलेटेड शॉट करके थका देता था आदमी को कि वो जो आपका जो एड्रेनलिन रश होता था ना वो खत्म हो जाता था। तो उस बंदे को बहुत सोच समझ कर मैं ऑब्जर्व करता था कि कोई उसको नहीं हरा पाता था, हमेशा वो जीत जाता था। तो मैंने सोचा इसको कैसे हराएं, तो और उसके बाद मैंने कुछ दिन के लिए गेम छोड़ दी क्योंकि मैं जो शॉट्स वगैरह खेलने लगता था ना मैं इरिटेट हो रहा था, तो वो शॉट्स जिस तरह एक्यूरेसी से जाती थी वो जा नहीं रही थी, मेरे आइडियाज़ गलत हो रहे थे। तो बहुत ज़्यादा जब आप किसी चीज़ पे फोकस करते हैं या बहुत ज़्यादा वो चीज़ कर रहे होते हैं ना तो आप डिसकनेक्ट करना होता है ताकि कुछ एंगल्स हैं जो आप मिस कर रहे हैं। फिर जब मैं पीछे होकर बैठा तो मैं सिर्फ आकर क्लब में उसकी गेम देखा करता था। दो हफ्ते इस तरह हुआ, फिर मैंने जाकर एक आध दिन थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिस की, मैंने उनसे कहा जी चले खेलें, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास पैसे बड़े कम होते थे और जो बंदा गेम जीतता था ना पैसे उसको नहीं देने पड़ते थे, हर गेम के आई थिंक 5 रुपये होते थे और वो वही देता था जो हारता था, तो वो तो सारा दिन खेलता रहता था और हम जो थोड़ी देर में हार के चले जाते थे जब भी उससे, तो उसमें क्या था कि फिर मैंने कहा चले जी खेलते हैं और आप यकीन करें मैंने उसको फर्स्ट गेम में ही हराया। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद दोबारा खेला मैं, फिर मैंने उसको हराया, फिर उसने भी हराया, फिर हमने भी हराया, जैसे भी था, लेकिन वो जब बैरियर टूट गया फिर उसको हराने का कोई इशू नहीं होता था, मुझे पता होता आज मैं जीतूंगा और उसी तरह से खेलना था। तो डिसएंगेज करना, जैसे रब कहता है कि जब आपको या आपके रब को जब इस तरह की उल्टी सीधी जब बातें करते हैं लोग, वो हिजान में या जज्बात में होते हैं, तो वहाँ उनको कन्फ्रंट करने के बजाय रिट्रीट करें, आप डिसएंगेज करें और फिर किसी सही मौके पर मुनासिबत के साथ आप उनके साथ एंगेज करें।
3: और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
4: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
5: Did you know? The heart of a blue whale is the size of a small car.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years' experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
8: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
9: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When was the last time you memorized a new surah? Take just a few minutes today to memorize just a few ayahs from a surah. Every letter of the Quran brings reward and every verse brings you closer to Allah. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
10: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
3: आपने थॉट्स के साथ भी ऐसे ही करना होता है, रिश्तों के साथ भी ऐसे ही करना होता है, बिजनेस में भी ऐसे ही करना होता है. मैं पीछे हट जाता हूँ और उस वक्त मैं कोई भी वॉइस नोट रिकॉर्ड करने से, कोई भी बात करने से, कोई भी चीज़, क्योंकि अब जजमेंट क्लाउडेड हो गई है, अब मैं उसको उस तरह डील नहीं कर पाऊंगा, तो पीछे हट जाएं. तो जितने भी मेरे दोस्त मेहरबान लोग होते हैं, मैं उन्हें हमेशा कहता हूं, जब सोच के गुंजल बनने लगे या आप गोल गोल घूमने लगे या आपको लगता है कि अब मैं थक गया हूं या गलत मुझसे काम हो जाएगा, तो दो तीन चीज़ ना किया करें. एक तो फैसला कोई ना किया करें, दूसरा मुँह से अल्फाज निकालने से पहले, कोई ईमेल सेंड करने से पहले, कोई वॉइस नोट करने से पहले, किसी चीज़ पे साइन करने से पहले, किसी अपने दोस्त को जिनसे आप इज्जत प्यार करते हैं, जिनके आपकी ज़िंदगी में बड़ी वैल्यू है, उनको कॉल बिल्कुल मत करें. उनकी किसी बात पे इरिटेटेड ना, फिर भी आप उनको तंग ना करें, पीछे हट कर टाइम दें. आपको लगेगा ये जैसे ही इम्पल्स उतर जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका गुस्सा, आपकी तकलीफ, परेशानी, इरिटेशन बैठ जाएगी, आपका पर्सपेक्टिव ज़्यादा क्लियर होगा. फिर जब आप इस चीज़ को एंगेज करेंगे तो टोटल डिफरेंट एनर्जी के साथ करेंगे आप. ठीक है हीरा सिंह जी?
4: अक्सर कहते हैं ना, अगर आपके किसी को कोई प्रॉब्लम है और आपने उसको फिक्स कर लिया है, और यू शुड कम ऑन द एयर एंड टेल द अदर लिसनर्स हाउ यू डिड इट, एंड दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई डिड इट. नाउ आई टैकल माय प्रॉब्लम्स, आई डोंट टैकल देम ऑन द स्पॉट. I step back and give myself something productive to do, something I'm good at. Mm-hmm. Like I'm good at making coffees, I'm good at make cooking. Main kuch bhi apne aap ko kuch alag task deke, then I get back into it and I seen the results. Aap itne acche aur itne badhiya faisle lete ho aur sukoon ke sath you can sit back that you've taken this decision for yourself and your family and anyone around you. Bahut acha mehsoos hota hai aur andar se jo mostly hamari jo problem hai khas karke desh mein ki we focus on what we are missing, jo hamari zindagi mein lack hai na, hum us pe concentrate kar rahe hain. Exactly. And it gives me so much new perspective, so much, and bahut abundance of energy to focus on other things.
3: Aapko main batata hu, jab main bahut zyada kisi cheez pe koshish, abhi main ek do kaam karne ki koshish kar raha hu 3-4 saal se, to wo build up ho raha hai pressure, kyunki creative kaam hai, likhne ka kaam hai, film ka kaam hai, stage plays ka kaam hai, ab wo ho nahi raha 3-4 saal se, aur wo covid ke baad se sab kuch hi ulat gaya hai. Even you know sleep cycle se leke bahut sare jo kaam the, और फिर उसको ग्रिप करने के लिए मुझे साल एक लग गया उन तमाम चीज़ों के ऊपर. तो मैं जब भी या मैं कोई ऐसा काम करता हूँ जिस पर मुझे लगता है अब ये काम हो जाएगा और वो काम नहीं होता, तो एक आध मिनट या एक आध घंटा या कभी कभी एक आध दिन लग जाता है उसमें से बाहर निकलते हुए. लेकिन उसमें निकलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, अच्छी सी चाय पीते हैं आप, अच्छी सी गप लगाते हैं आप, अच्छी सी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी सी मूवी देखते हैं, आराम से सोते हैं, और साथ साथ मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा था वो अगर नहीं मिली तो मेरे पास है क्या क्या, किस किस्म के लोग हैं मेरे पास, किस किस्म के एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं मेरे पास, और किस किस्म की इज्जत प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी है मेरे पास. एक चीज़ नहीं भी हुई तो क्या होगा, दोबारा कोशिश कर लेंगे, फिर कभी हो जाएगा, इसके साथ नहीं हुआ तो किसी और के साथ हो जाएगा. लेकिन इस वक्त को मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ, और वो वाली बात, पंजाबी तुसी आदमी हो, पंजाबी वितन दसना, अपना रंजा राजी रखना बहुत ज़रूरी है. रंजा जब नाराज़ हो जाता है ना तो हीर जो है ना उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती, तो बिल्कुल इसी तरह जो आपका रंजा है ना वो आपके अंदर रहता है, तो जब वो थक जाता है, फंस जाता है, इरिटेट हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, दुखी हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, तो उस रंजे को राज़ी रखने के लिए, उस रंजे को, सोने को जो चीज़ पसंद है उस पे ध्यान दें, जोर मत लगाएं उसके ऊपर ना. और ये बाहर के लोगों के लिए भी है, जब भी आप किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं, किसी मकसद से मोहब्बत करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी मकसद के साथ आप अटैच्ड हैं, कोई ज़िंदगी में एक्सेलेंस अचीव करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसा इंसान है या इन्वायरमेंट है, कुछ भी है, उस पर जोर लगाने की कोशिश मत करें। हम जोर जब जिम में भी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ तोड़ बैठते हैं, रिश्तों में भी जब हम बहुत जोर लगाते हैं, बेशक आप सही हों, बेशक जो आप चाह रहे हैं वो सही है आपके हिसाब से, लेकिन फ्री विल रब ने एक ऐसी चीज़ पैदा कर ली हर इंसान की ज़िंदगी में, उसको दे दी उसने, जिससे इस पूरी दुनिया का ड्रामा, ये पूरी दुनिया की फिल्म, ये पूरी दुनिया का उतार चढ़ाव सिर्फ एक फ्री विल के ऊपर है। और अगर आपने ज़िंदगी में अपनी फ्री विल अपनी पे आप काम कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर आप उसको फ्री विल का हिस्सा बना के आप डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं और वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है या वो और तरह से कोई पर्सनैलिटी है, तो ये काम हमेशा खटाई में पड़ जाएगा। एक और बात याद रखिए, हम में से बहुत सारे लोगों को ये जोहम भी है, ये कीड़ा भी है कि हम इंसानों को ठीक कर लेंगे, या कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है तो देखें जी वो इंसान ने आपसे मोहब्बत की है, उसने मेरे लिए ये छोड़ा वो छोड़ा, या उन्होंने हमारे लिए ये कुर्बानियाँ दी, तो अब मैं इस इंसान को जो डैमेज्ड है, चाहे लेडी है कोई चाहे कोई जेंटलमैन है, तो अब उन्होंने हमारे लिए इतना छोड़ा है, तो मैं अपने आप को ये एक ईगो बूस्ट भी है और ये एक रिकग्निशन होती है कि मेरी खातिर उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा है, याद रखिएगा, और अब मैं उनका साथ दूंगी या उनका मैं साथ दूंगा, वफा करूंगा, और अब मैं किसी ड्रगी से उसकी ड्रग्स छुड़वा दूंगा, या मैं अल्कोहलिक से उसका अल्कोहल छुड़वा दूंगा, या मैं किसी एक टेम्परमेंटल आदमी से, और जो उसके बहुत सारे और हाथ छुट आदमी है या और कोई मसाइल हैं, उस आदमी को टेम करके मैं उसको ठीक कर लूँगा या ठीक कर लूँगी। ये 100% वो बैटल है जो आप हारेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट यू एंड द अदर पर्सन, इट्स यू आर फाइटिंग अगेंस्ट अ नेचर, अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट इज हैपन्ड इन दैट पर्सन्स लाइफ, द रिएक्शन ऑफ दैट पर्सन टुवर्ड्स द एक्शन दैट इज हैपन्ड टू हिम, उसका सोचने का तरीका, उसको चीज़ों का डील करने का तरीका, उसकी वीकनेस, और उसका एक जो पूरी जिंदगी 40 साल में या 30 साल में या 26 साल में या 50 साल में बनी है, या कोई ऐसा दोस्त आपको मिल गया जिसको लगता है आप उसको फिक्स कर देंगे। यू कैन नॉट फिक्स ह्यूमन बींग्स अनलेस दे वॉन्ट टू फिक्स देमसेल्व्स, एंड वेन दे आर डूइंग दैट यू कैन जस्ट बी अ सपोर्टिंग रोल इन देयर लाइफ, नॉट द पिविटल रोल और नॉट द लीड रोल इन देयर लाइफ। किसी भी इंसान ने अगर ये गलती की, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी आप ज़ाया कर सकते हैं, बट ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री विल का जो रब ने चीज़ बनाई है उसके मुताबिक इंसान आहिस्ता आहिस्ता मजमुआ है, वो एक जर्नी है पूरे का पूरा जो अभी आपके पास आया है, और उसको लगता है कि आप उसको बचा लेंगे, या किसी लेडी को लगता है कि आप उनको बचा लेंगे, इस कोई किसी को नहीं बचा सकता। आपने खुद जो किया है, जैसे आप हैं, जैसे आप चीज़ों को डील करते हैं, अपने पुअर इंपल्स कंट्रोल को आप कैसे डील करते हैं, अगर आप एडिक्टेड हो गए हैं किसी चीज़ से, सब्सटेंस से लेके इंसानों से लेके इन्वायरमेंट तक, वो भी उसको कैसे डील करना है, ये भी आपका अपना तरीक़ेकार और आपका ये काम है। जितने लोगों को ये गॉड सिंड्रोम, एक इंसान होता है कि जी मैं, क्लासिक फिक्सेस होते हैं साइकोलॉजी में, जो मसले लेके उनको लगता है कि वो फिक्स कर लेंगे, एक हद से आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो जब भी आप किसी को हेल्प करना चाहते हैं, फैमिली हो, चाहे ब्लड रिलेशनशिप हो, चाहे सेंटिमेंटल कोई लव के रिलेशनशिप्स हैं या फ्रेंडशिप्स हैं, उसमें भी एक हद से आगे, वो तो डूबा है आपको भी डुबोएगा, ये ऐसे ही होता है और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि काम अपना अपना करना होता है, और जो भी सपोर्टिंग रोल में होता है उसको समझना है कि लीड रोल का अपना एक काम है, जो उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, अपनी मकसद की उसकी ज़िंदगी की जो हेल्थ है, ये तमाम उसके अपने मसाइल हैं, और उसमें से वक्त निकाल कर, टाइम निकाल कर, अपनी एनर्जीज रिसोर्सेज किसी को हेल्प करने के लिए आप यूज़ करते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन एक हद से आगे नहीं किया जा सकता, वरना काम का बंदा भी आप बर्बाद कर देंगे एक नाकाम या नाकारा बंदे के साथ साथ। जो जो डैमेज गुड्स होते हैं उनको एक हद तक ही थुक थिगड़ी लगाकर ठीक किया जा सकता है, उसके बाद जो उनकी जो क्रीकिंग साउंड होती है या उनको जो दीमक लग जाता है वो एक रियलिटी है, उसकी जो उसके ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर, उस सोफे के ऊपर, उस मेज़ के ऊपर भी जब आप बैठते हैं तो कितने ध्यान से बैठते हैं, और एक दिन धड़ाम से वो गिर जाती है वो चीज़, क्योंकि इंसानों के साथ भी ऐसे ही होता है। तो जब तक उस और पोटेंशियल पे नहीं जाना है, एक और बीमारी हम लोगों को बहुत है, हम में भी थी और भी लोगों में होती है, कभी कभी हम बंदा फंस भी जाते हैं उसके अंदर, कि इस इंसान में बड़ा पोटेंशियल है, ये इंसान को बहुत बड़ा कमाल कर सकता है, ये लेडी जो है लिख कर करके, या उसके अंदर ऐसी ज़बरदस्त खासियतें खसूसियात हैं कि एक दिन ये बन जाएगी। रिश्ते, फ्यूचर में नहीं बनाए जा सकते रिश्ते, किसी भी किस्म का रिश्ता प्रेजेंट में बनेगा। प्रेजेंट में आप जो ऑन टेबल लेके आ रहे हैं, जो आप हैं, उसकी बेस पे डील बनती है। एक कंपनी जब आप खरीदते हैं या उससे मर्ज करते हैं, तो इस वक्त उसकी जो नेटवर्थ है या उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से आप उसको पे करते हैं या उसको आप ब्लेंड इन करते हैं अपने साथ। उसकी 20 साल के बाद क्या वैल्यू होगी, ये चीजें उस वक्त नहीं, आप इसकी वर्थ के ऊपर आप उसको थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे सकते हैं, लेकिन ये सब इस वक्त की वर्थ के ऊपर करना है आपने। हम में से बहुत सारे लोग इंसानों में, रिश्तों में ये गलतियां करते हैं कि जी इसमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ये ऐसा कर सकता है या वैसा कर सकती है। बिल्कुल नहीं, वो इस वक्त क्या कर रहे हैं, वो कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। 20% भी करेंगे तो क्लैरिटी में क्या करेंगे, 80% बेशक ना करें, लेकिन डील सिंपल और क्लियर होती है। और जैसे ही उनको वो चीज मिल जाती है, आपने देखा है जिस दिन कागज पे साइन हो जाता है उसके बाद लोगों के सोचें बदल जाती हैं, जहन बदल जाते हैं, और वो जो जिस चीज के लिए मर रहे होते हैं, जब वो चीज हाथ आ जाती है तो वो टोटली और लोग हो जाते हैं। इंटरेस्ट इंटैक्ट कैसे करना है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीजों को बढ़ाना कैसे, अपना रोल को डिफाइन करके उसको एक्सीलेंस पे कैसे पहुंचाना है, कैसे रुकेंगे इस बात से कि दूसरे के 80% या 70% या 30% या जो 50-50 की डील हुई थी उसमें जाकर नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। मैंने कितने लोगों के साथ बिजनेसेस किए, कितने लोगों के साथ मेरे हर किस्म के रिश्ते हैं, हर आदमी अपना काम छोड़ के दूसरे के काम में टामक टोइयां मारता है, और उस बदबख्त को इतना भी नहीं पता होता कि चलता फिरता बिजनेस, फलता फूलता हुआ रिश्ता या बिजनेस या कोई भी चीज बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इनसिक्योरिटी और कॉम्प्लेक्सेस में जब आप होते हैं और कंट्रोल चाहते हैं उन चीजों का, और कंट्रोल के बारे में भी याद रखिएगा, कंट्रोल सिर्फ उस आदमी को सूट करता है जो कंट्रोल नहीं चाहता। वो अपने काम में इतना अच्छा होता है या इतनी अच्छी होती है कि आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी बन जाती है उस घर की, उस सिस्टम की या उस ऑर्गेनाइजेशन की, कि उस बंदे या बंदी को कंट्रोल दे दें, बिकॉज उस काम के साथ डेडिकेटेड है और उसमें वो रिजल्ट ले आया है। लोग आपको कहेंगे कि आप हेड बन जाएं, आप प्रेसिडेंट बन जाएं, आप इस कंपनी के फ्लां रोल जो है वो आप ले लें। कम्युनिटी में लोग आपसे कहेंगे कि क्यों आप क्यों नहीं ये बन जाते, आप क्यों नहीं बन जाते, आपके पीछे आते हैं। और जो लोग कहते हैं ठीक है देखेंगे समझेंगे, इसके साथ ये तमाम चीज़ें हैं, फिर ये मेरी कंडीशंस हैं, ये अगर आप पूरी करते हैं तो मैं ये काम करता हूँ, ऐसे लोगों को कंट्रोल खुद ब खुद आ जाता है। जो लोग भी कंट्रोल अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई कमजोरी होती है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ डर होता है जिसकी वजह से वो ऐसे करते हैं, या उनको ये पता होता है कि दूसरा बंदा इस काबिल नहीं है कि इसको कंट्रोल कर पाए, लेकिन वो चाहता, या तीसरा बंदा, चार लोग भी हो सकते हैं एक ग्रुप के अंदर, या फैमिली में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कंट्रोल चाहते हैं लेकिन वो डिजर्व नहीं करते। जो आदमी भी कंट्रोल चाहेगा ज्यादातर वो डिजर्व नहीं करता। और कौमों का भी यही अलमिया है, अलमिया भी है कि ये सॉरी अलमिया है कौमों का भी यही लफ्ज भी उतने सालों में आपने यूज नहीं किए होते ना, तो कौमों का अलमिया भी यही है, आयरनी है ये। और इसी में इंसान, बहुत सारे लोग जो पावर चाहते हैं वो उस पावर के काबिल नहीं होते। तो घरों में भी यही है, ऑर्गेनाइजेशंस में भी यही है, और ज़िंदगी में भी यही है। और जब भी आप ज़िंदगी में ऐसे लोग और ऐसे काम देखें, तो मेरा बड़ा सिंपल सा तरीक़ाकार है, आई जस्ट स्टेप आउट। इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टू मच टाइम एंड एनर्जी। जब आपको जो चीज़ नज़र आ रही है और जो चीज़ कि आप एक्सपर्ट हो चुके हैं 25-30 साल करते करते, उसमें अगर आपकी सुनवाई नहीं है और जो आपकी जगह है वो नहीं बनती, तो लड़ाई झगड़े अदालतें हैं, टाइम ज़ाया, दुनिया में इतना वक्त नहीं है। उधर एक अदालत है, उसमें भी अच्छा खासा मामला खड़ा होगा वहाँ पर। ये दुनिया की छोटी मोटी मसाइल, छोटे मोटे पैसे, छोटे मोटे कागज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी हल्कान करने के बजाय एमिकेबल तरीके से आप चीज़ों को डील करें, जो भी लेना देना है वो दें, नहीं कुछ मिलता है तब भी जाने दें, आगे जो आप चीज़ बनाएंगे, क्योंकि आप तो आप हैं, आप एसेट हैं, आपकी सोच एसेट है, आपका काम एसेट है, आपके मिलने मिलाने वाले लोग खुद कहीं ना कहीं से चीज़ बन जाएगी जो 25-30-40 साल की जिंदगी आपने गुजारी है। जस्ट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स एंड स्टार्ट फ्रेश। डरे मत जिंदगी को बार बार फ्रेश स्टार्ट करने से। मैं 3 दफा स्टार्ट कर चुका हूं, 4th दफा स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो कुछ मैंने सीखा जिस डेकेड में, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, कहीं नहीं जाता ये सब कुछ। जो कुछ भी आया, साथ लेकर नहीं आए थे पैसे, साथ लेकर नहीं आए थे पावर, साथ लेकर नहीं आए थे ये रिस्पेक्ट और मोहब्बत, ये सब अलोंग द वे आपको मिली है। देने वाले ने ये दिया है, वो आगे और भी देगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा ढीला छोड़ के लेट इट गो, और फिर आप देखें कैसे चीज़ें आपके पास आती हैं। जैसे ही आप चीज़ें छोड़ के पीछे बैठेंगे, आप देखें सब कुछ आपके सामने खुल जाता है। और फिर गालिब ऐसे नहीं कहते, बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है तमाशा शब रोज मेरे आगे, यानी कि बच्चों का प्ले ग्राउंड है ये दुनिया मेरे आगे, और रोज़ मेरे आगे ये सब तमाशा होता रहता है। जानने वाला जानता है بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے. ٹھیک ہو گیا سر؟
4: I can't wipe the smile off my face.
3: شروع کہاں سے ہوئی تھی ختم کہاں ہوئی؟
4: کوئی بات ہے سر,
3: آپ کو بور کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے, آپ کی بات کو لوگوں تک پہنچانا, اس کا ایک ایسا کلپ بنانا جس سے بہت سارے اور لوگوں کی بھی آسانی ہو اور وہ بھی شیئر کر سکیں, یہ بیسکلی ہمارا مقصد ہے. اور کبھی کبھی کیونکہ آپ کی جاب آج کل ایسی ہے کہ کبھی کبھی آپ کو موقع ملتا ہے, لیکن اب ہم کو یقین ہوا کہ جب بھی آپ کو موقع ملے گا آپ خود بخود آ جائیں گے, کیونکہ آپ نے مزہ چکھ لیا ہے.
4: بالکل, اور یہ مزہ ایسا ہے سر, ابھی میں ابھی آپ سے بات کر رہا تھا, آپ سے صرف سننے میں نہیں نا, میرے پورے پورے I was getting goosebumps all over my body like in a good way. مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے.
3: Once you are connected with truth, when you are connected with reality, when you are connected with the source of energy and that is coming from you, from the audience, and the kind of love, care and respect we have for this platform, اس کے اوپر جو بھی بات کی جائے گی لوگوں کو اس کی انٹینشن کا پتہ ہے, لوگوں کو اس کی انٹینٹ اور جو کانٹینٹ ہے اور اس کے اندر جو ہماری کنٹینٹمنٹ جو اس سے ہمیں مل سکتی ہے اور آسانی پیدا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, وانس یو آر یو نو کائنڈ ان ٹچ ود اٹ اور اس کے ساتھ آپ کے جو ہے نا کنیکشن, یو بلڈ اے کنیکشن ود اٹ, سو انرجی کا فلو ٹرانسفر ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے یہ آپ کے دل کی آواز ہے, یہی آپ کہنا چاہتے ہیں, یہی آپ سننا چاہتے ہیں, اور یہی وہ بات ہے جو کبھی کہی نہیں گئی, کبھی سنی نہیں گئی اور کبھی بولی نہیں گئی, اور اگر یہ وقت پر ہو جاتی تو ہم اب تک ہمیں پر لگ گئے ہوتے اور ہم اڑ رہے ہوتے بجائے اس کے کہ ہم رینگ رہے تھے.
4: سر ابھی میں I'll just ask you one last question and I'll confidence and decision making, what's the correlation?
3: دوبارہ پوچھئے.
4: Confidence and decision making, ان میں کیا ریلیشن ہے؟
3: دیکھیں دو تین چیزوں کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے. یہ ساری چیزیں ایک درخت جیسے لگا ہوتا ہے نا, اس کی ایک روٹ ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر ایک سٹیم ہوتی ہے, سٹیم کے اوپر پھر برانچز نکلتی ہیں, برانچز کے بعد پتے آتے ہیں, پھل پھول آتے ہیں, ٹھیک ہے, پھول نکلتے ہیں, پھر اس سے پھل بنتا ہے, پھر وہ جھڑتا ہے. یہ پورا ایک پروسیس ہے, یہ جو ٹری آف لائف بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اسے سب کچھ سیکھا جا سکتا ہے. آپ کو یہ کوسچن کانفیڈنس اور ریلیشن شپ بلڈنگ جو ہے, کانفیڈنس اور ڈسیزن میکنگ جو ہے, ڈسیزن میکنگ ایک پروسیس ہے, کانفیڈنس ایک ٹول ہے جو کہ اس کے لیے استعمال ہوگا, اور بھی بہت سارے ٹول ہیں, ایکسپیرئنس زندگی کا, کلیئرٹی آف مائنڈ ایک اور ٹول ہے, آپ کی فائنینسز ایک اور ٹول ہے, آپ کے ریسورسز ایک اور ٹول ہے, آپ کے ریلیشن شپس وتھ پیپل یہ ایک اور ٹول ہے. یہ سب چیزیں جب ایک جگہ پہ مل جاتی ہیں تو یو آر کانفیڈنٹ انف ٹو میک اے گڈ رائٹ ڈسیزن. اس کے علاوہ آپ کا بائسڈ نہ ہونا ایک اور بہت اچھا ٹول ہے, آپ کا آبجیکٹیو ہونا ایک اور بہت اچھا ٹول ہے, آپ کا ڈو یہ اس ٹائم کے اوپر کس وقت آپ یہ ڈیسیجن لے رہے ہیں, اس ڈیسیجن کے پروز اینڈ کونس کون سے ہیں, اس کے پیکج ڈیل میں آپ کتنے ریئلسٹک ہونا ایک اور ٹول ہے, کہ کتنے ریئلسٹک ہیں آپ کے اس وقت جو بھی آپ جس سچویشن میں ہیں, جس ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر آپ گزر رہے ہیں, اس وقت آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے جب آپ فیصلہ لیں گے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے, اور اس میں ایک چیز اگر آپ ڈال دیں گے تو قدرت کا وہ قانون آپ نے ٹرگر کر دیا جس کا فائدہ ہو ہی ہو. یہ فیصلہ کرتے ہوئے آپ کی انٹینشن کیا ہے, اگر اس میں دوسرے بندے کی یا دوسری پارٹی کی بھلائی اگر آپ شامل کر لیں گے تو آپ نے قدرت کا قانون ٹرگر کر دیا, دوسرے کی بھلائی سوچ کر ایسے ڈیل کرنا کہ اس کا بھی فائدہ ہو, آپ کا بھی فائدہ ہو, اور رشتے کا بھی فائدہ اور انوائرمنٹ کا بھی فائدہ ہو. اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو اس سے بہتر اور کوئی ڈیل نہیں. تو یہ چیزوں کی کو ریلیشن بھی اس وقت آ گئے, اور ساتھ ساتھ آج اب جنہوں نے یاد کرایا تھا شناز جی نے بہت ہی اچھا ٹریک, تو یہ وہ راستہ ہے چلنے کا, آہستہ آہستہ آرام آرام سے آپ نے چلنا ہے, سٹر کریٹ نہیں کرنا ہے خامخواہ کا, طوفان چائے کی پیالی میں نہیں اٹھا کے کھڑا کر لینا, جب کہیں جانا ہے تو تیاری کے ساتھ اپنے صحیح موقع کا صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے, پھر وہاں پر وہ چیز کرنی ہے اور وہ چیز نکالنی ہے, وہ چیز دکھانی ہے جس کا وقت آ گیا ہے. اپنے وقت پر آیا ہوا آئیڈیا سب کچھ ہے, اسی کو پیٹنٹ کر لینا وہ ایک اور بڑا کمال کام ہے. سو یہ جب ہمیں سمجھ آ جائے گا, اور یہ سب سلولی اینڈ گریجولی ہوگا, بہت ساری چیزیں ہمیں بہت جلدی زندگی میں چاہیے تھی لیکن اس کا وقت نہیں تھا, اس کو پانے کے لیے پھر انسان غلطیاں کرتا ہے, کچھ غلطیاں مسٹیکس ہوتی ہیں جس سے آپ سیکھ سکتے ہیں, لیکن کچھ غلطیاں بلنڈرز ہوتے ہیں, जो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो आपने ये ज़रूर समझना है कि ज़िंदगी में आप गलतियाँ ज़रूर करें, क्योंकि उससे आप सीखेंगे, समझेंगे, और उसमें आपके अंदर डेप्थ पैदा होगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड पैदा होगी, व्हाट यू वांट व्हाट यू डोंट वांट क्लियर आपको होगा। लेकिन जब आप बिना देखे जज्बात में, बिना सोचे समझे दूसरों की देखा देखी, किसी के डर से ब्लेंड इन करने के लिए, किसी की तरह बनने के लिए आपने वो डिसीजन ले लिए जो आपकी नेचर के अगेंस्ट हैं, या जो आपकी वीकनेस है वो उससे बाहर निकल के खुल के सामने आ गई, तो उसको ब्लंडर कहते हैं। और वो ब्लंडर्स जो हैं, फिर जब आप उसमें से निकलने की भी कोशिश करेंगे तो पूरी तरह निकल नहीं पाएंगे, और उसका जो नुकसान हुआ है वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलेगा। तो ये ज़रूर आपने सोच लेना है कि मिस्टेक्स करें, क्योंकि पुरानी गलतियाँ क्यों करनी है, और गलतियाँ नहीं करें क्योंकि गलतियों से आदमी सीखता है। तो बार बार एक गलती जो सीख रहा है उसका मतलब यू नो डूइंग सेम थिंग्स ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट इज कॉल्ड इनसैनिटी। ये जुमला जिस दिन मैंने पहली दफ़ा सुना था वो मेरी ज़िंदगी बदल गई थी इस जुमले को सुन के, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को सामने रख के कसौटी में ये चेक किया था कि यार ये कितना मैंने किया है, और फिर सब बदल गया था। और मेहरबान थे वो भाईजान जिनके मुँह से ये अल्फाज निकले और लोगों तक पहुँचे, आइंस्टाइन थे, तमाम मेहरबान लोग जिन्होंने पहले आवर में बहुत घमसान का रन पड़ा जी, बहुत मज़ेदार किस्म के क्वेश्चंस और पॉइंट्स ऑफ व्यू आए। उम्मीद करते हैं इससे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों के गोश गुजार हुई होंगी। बीच में बहुत सारा अपनी अम्मा का हमारा फेवरेट ट्रैक आपने सुना, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये ना वो उस ज़माने में ना नाक से बहुत सिंगिंग मतलब बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेशंस के साथ अगर आप सिंगिंग कर सकते हैं ना, तो कुछ लोग उनके नाक जो नाक चढ़ा के बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देती थी, ये तरन्नुम नाज होती थी, फरीदा खानम थी, उसके अलावा द लेजेंडरी नाहिद अख्तर। लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा जो आप चेक कीजिएगा इस गाने को, वो नाक के साथ कितना अच्छा एक्सप्रेशन देती हैं, क्यूट। कोई है जी हमारे साथ रेडियो आज़ाद रोने? हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम आजाद नाना।
3: वालेकुम अस्सलाम, आवाज थोड़ी बीमार है, कैसी हैं आप?
5: मैं ठीक हूँ आजाद नाना, पहले से बहुत बेहतर।
3: अब आप बिल्कुल फिर घोड़े की तरह फिट हो जाएंगी,
5: बिल्कुल सही।
3: कभी इधर भागेंगी कभी उधर भागेंगी, कहीं जहाँ चारा नजर आएगा वहाँ खड़ी हो जाएंगी।
5: आपने वो बना भैंस बना,
3: पानी नहीं नहीं घोड़ा का है हमने, लंबी रेस का घोड़ा, जब पानी जहाँ मिल जाता है अच्छा फ्रेश पानी, ग्रीन पैस्चर्स में दौड़ता हुआ लंबे बालों के साथ, यू नो हमने सारा फील भी कर लिया उसको। अभी एक फिल्म आई है उसमें घोड़े का नाम भी आजाद है, वो क्या काला उन्होंने कमाल घोड़ा अरबी कहीं से उठाया है, क्या उसकी उठान है और क्या उसकी बांकपन है उसकी, मजेदार।
5: कौन सी फिल्म है आजाद लाला?
3: ये फिल्म है, नाम है उसका आजाद।
5: अच्छा ठीक है, नहीं आजाद लाला अब तो काफी बेहतर हूँ मैं, और इतना अच्छा लग रहा है आजाद लाला, बल्कि मैं सोच रही थी मैंने कहा हम कैसे छोटी छोटी चीजों को जैसे इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना बटन बंद करते भी मुश्किल हो रही थी, चम्मच उठाना भी, मुंह खोलना, और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं और बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भाग रहे होते हैं। और ये अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं, लाइक जब हम अपनी दी स्मॉल थिंग्स वी जस्ट इग्नोर।
3: अगर आप सीखना चाहें ना और अपनी औकात जानना चाहें, पिछले दिनों वैसे ही मेरा उंगली ऊपर से ना स्किन कट गई, तो एक तो वो खून बहुत आ रहा था, पता नहीं कैसे हुआ, तो किसी चीज़ के साथ लग गया तो एकदम, तो वो पे जाए ही ना, मैं जितना उसको रोकूं वो करे, फिर खैर मैंने उसको बांध दिया। फिर उसके बाद बर्तन धोते हुए, हाथ मुंह धोते हुए, वुजू करते हुए, स्विमिंग करते, हर वक्त उसी का ख्याल रहता था। और वो और उसकी जलन भी जानी, क्योंकि वो स्किन का कोई ऐसा पार्ट था, वो पानी गर्म लगे तो जलता था, ठंडा लगाए तो जलता था, तो दो तीन दिन तक ना पता चला कि इंसान, ये कहते हैं जी कुछ दिनों की आग होगी, अरे भाई आग को छोड़ो, थोड़ी सी स्किन उतरी है, हवा पास से गुजरती है तो इतनी तकलीफ हो रही थी। तो ये लोग, हम लोग ना देखते सोचते समझते नहीं है बात करने से पहले, और दुनिया के जहन्नुम में रोज जल रहे होते हैं हम, और उसी की तपिश में लोगों ने क्या किया, अभी तिक्के अपने बना लिए हैं, थोड़े थोड़े तिक्के बना के खाते रहते हैं, आग लगी हुई है, अंगार पखे हुए हैं, हवा शवा लगा देंगे, जो ज्यादा डेढ़ सियाने उन्होंने साथ पंखा लगा दिया कि वो परमानेंट हवा लग जाए, हाथ के भी तकलीफ नहीं करना चाहते ना, ताकि वो ट्रिगर थम नहीं हो, तो जो सारी चीज़ें टेंडनाइट सारी चीज़ें भी ठीक हो सकती हैं, साथ बंदा एक्सरसाइज ही कर ले हाथ की, नहीं जी उन्होंने कहा नहीं हम पंखा लगा लेंगे।
5: लेकिन वाकई हमें अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए हर इन चीजों पे, लाइक वी शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग।
3: शो ने हेल्प की साथ जो करनी चाहिए उसको
5: बहुत ज्यादा आजाद अल्लाह, मैंने आपकी जैसे पिछले शोज आपके जो अभी गुजरे हैं उनको सुनना शुरू किया,
3: वो कैसे थे? बहुत अच्छे शो थे, पिछले दो बहुत ही अच्छे थे।
5: हाँ जी बिल्कुल, उनमें से एक मैंने सुना है, अभी दूसरा रहता है मेरा तो।
3: वो सुना आपने जिसमें कहा है, जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं बताऊंगा नहीं, और आपने कहा जो कुछ पूछेंगे मैं वो सब बताऊंगा, और उसका रास्ता भी बताऊंगा, प्लान भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पूछेंगे आप, बजाय इसके कि सिर्फ हमें कहते रहे कि आप ऐसे हैं आप वैसे हैं, आपने ये पा लिया वो पा लिया, कैसे पाया, क्यों पाया, क्या हुआ, वो पूछें, रास्ता कौन सा है, जो भी आप पूछना चाहते हैं पूछें, तो उसका जवाब आएगा। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

यानी किसी चीज़ का इधर उधर होना, जैसे दिल धड़कता है इधर उधर होता है और जज्बात मेरे इधर उधर होते हैं, कभी गुस्सा कभी ठंडक, यू नो, कभी कभी एंग्जाइटी, कभी खौफ, कभी इत्मीनान। तो दिल जैसे फिजिकली मेरा दिल हिलता रहता है, वैसे मेरे दिल जज्बात जो दिल के अंदर हैं वो भी हिलते रहते हैं, उनमें तकल्लुब आता रहता है। तो उसके लिए अच्छी ताबीर क्या है? कल्ब, अल-कल्बु मिन अत-तकल्लुब। ठीक है, तो ये आम लफ्ज़ है दिल के लिए। ख़ास लफ्ज़ दिल के लिए क्या है? फुआद। फुआद अरबी में कहते हैं असल में फ़ादा जो फ़ेल है, फ़ाद अल-लहमा, कि वो जब गोश्त को बारबेक्यू करते थे ना, आग जला के उस पर गोश्त को लकड़ी पे डाल के उसको रोस्ट करते थे, तो वो गोश्त को लहमुन फ़ईद कहते थे, यानी आग के अंदर तपाना। तो जो दिल खौल रहा हो ना किसी जज्बे से, जो दिल किसी तरह से आग में हो, या मोहब्बत की आग में है, या नफरत की आग में है, या खौफ की आग में है, या उदासी की आग में, कोई भी जज्बा है जो उसको मुश्तइल किए हुए, उसको आग में डाले हुए है, तो ऐसे दिल की हालत को क्या कहा जाता है? फुआद। यानी आम तौर पे हम सब के दिल में क्या है? कल्ब। लेकिन कभी कभी कुछ खास इवेंट्स होते हैं हमारी जिंदगी में, कुछ खास हादसे होते हैं, और उस वक्त हमारा कल्ब कल्ब नहीं रहता, क्या हो जाता है? फुआद हो जाता है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इस पहले मैं आपको सूरतुल इसरा की आयत की कुछ कुछ हिकमतें बताता हूँ, बहुत खूबसूरत हैं। अल्लाह ताला ने कहा है वला तकफू मा लैसा लका बिही इल्मुन, आप ऐसी चीज़ की पैरवी ना किया करें जिसके बारे में आपको इल्म ना हो। अगर किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से पता ना हो तो उसको छोड़ दिया करो, इल्म के बगैर ऐसे ही फॉलो मत किया करो। ठीक है, फिर कहा इन्न समआ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अनहु मसूला, सुनना देखना और फुआद तमाम के बारे में पूछा जाएगा, इन तमाम के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, यहां पर कल्ब का लफ्ज है या फुआद का लफ्ज है, ये क्यों है? यहां ये भी कहा जा सकता था सुनना देखना और कल्ब, लेकिन कहा समع बसर फुआद, तो क्या क्या फायदा हुआ इस लफ्ज का? देखें, जब इंसान जज्बात में आ जाता है ना, तो वह ऐसी बातें कह देता है या ऐसी हरकतें कर देता है जो वह आमतौर पर नहीं करता। होता है कि नहीं? आपकी घर में लड़ाई हुई और मुंह से ऐसे लफ्ज निकल आए जो बाद में यार मैंने क्या कह दिया, राइट? मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, शौहर ने कुछ गुस्से में आके कुछ बात कह दी बहुत ही ज्यादा बुरी, मुझे पता था तुमसे मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, और उसके बाद एकदम से पहले तो दोनों का वॉल्यूम बढ़ रहा था, जैसे ही उस शौहर ने यह बात कही तो बीवी के साथ क्या हुआ, क्या वॉल्यूम एकदम से गिर गया, वो चुप हो गई, रोती हुई कमरे में चली गई, या फिर वो शौहर ने आवाज उठाई कोई और गुस्से में बात की और वो बिल्कुल खामोश हो गई, फिर वो आके उसको मनाने के लिए कहता है देखो देखो ये मैं असली मैं तो ये हूं ना, वो मैं थोड़ी था, वो पता है मुझे पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन यू नो मी, दिस इज द रियल मी, यू नो, क्योंकि जब जज्बात में इंसान आता है तो वो कोई और ही बन जाता है। तो वो कहता है कि देखो मैं उस वक्त जो है मैं किसी और स्टेट में था, मैं कल्ब मेरा कल्ब नहीं था, वो मेरा क्या था? फुआद था। तो फुआद को तो मेरे खिलाफ ना रखो ना, उसके साथ फुआद के साथ तो मेरे खिलाफ केस ना बनाओ, मेरी हकीकत वो फुआद नहीं है, मेरी हकीकत मेरा कल्ब है। और ये चीज़ फिर आप कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बीवी किसी शौहर से उल्टी सीधी बातें कह सकती है और फिर बाद में कि आपको तो पता है मैं ऐसी हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन मैं दिल से अच्छी हूं। यानी कभी कभी फुआद तो निकल आता है लेकिन कल्ब तो ठीक है ना, फिर भी यही बात हो रही है ना, तो फिर आप कहें हाँ बात तो ठीक है, हाँ, यानी फुआद की छुट्टी है, कल्ब जिम्मेदार है, अगर फुआद से कुछ निकल आए यार खैर है, वो तो फुआद था, कोई बात नहीं। अच्छा, अब वो कोर्ट में क्या करते हैं? अब कोर्ट में अमेरिकन कोर्ट सिस्टम में यह नया चला है, किसी ने मर्डर्स किए जी, ठीक, मर्डर्स के पकड़ा गया, कहा कि इसकी ब्रेन केमिस्ट्री जो है ये ज़रा नॉर्मल नहीं है, तो इसके अंदर जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड हो गए हैं, तो इसलिए वो हाइपर अग्रेसिव है, तो इसलिए इसने ये मर्डर्स किए हैं, इसकी गलती नहीं है, इसके केमिकल्स की गलती है, इसके जो दिमाग की कीमियाई है वो उसमें फुआद ज़्यादा है, वो रोस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए इसको बरी कर दें।
यानी फुआद के बहाने से इंसान जिम्मेदारी से हटने की कोशिश करता है, ये बात समझ में आ रही है?

0: چھوٹی سی مثال ہے، سورۃ الاحزاب میں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، شادی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جذبات کے بارے میں بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آدمی کے دل میں دو دل، کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں ڈالے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. یہاں پہ دو الفاظ جو ہیں وہ ذرا عجیب ہیں، ایک تو ہے رجل، مرد، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو مرد انسان کہا ہوتا تو کیا فرق پڑ جاتا، اور پھر دل کی بات ہے تو دل کہاں ہوتا ہے؟ سینے میں. سینے کا لفظ عربی میں ہے صدر. تو اگر کہا ہوتا ما جعل اللہ لانسان من قلبین فی صدره، رجل کی جگہ انسان اور جوف کی جگہ کیا؟ صدر. اگر انسان کہا ہوتا تو کون شامل ہوتا؟ مرد بھی اور عورت بھی، ٹھیک ہے. اور اگر صدر کہا ہوتا جوف کی بجائے تو صرف سینے کی بات ہو رہی ہوتی، جوف پورا جسم ہوتا ہے. بات آپ سمجھ گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے مرد کے جوف کے اندر، یہاں سے یہاں کو جوف کہتے ہیں، پیٹ سے لے کے سینے تک، گردن تک، یہ جوف ہے ہمارا، اس کے اندر دو دل نہیں ڈالے. لیکن عورت کے اندر تو بچہ آ جاتا ہے نا، اور جب بچہ آ جاتا ہے تو کم از کم کتنے دل ہو جاتے ہیں؟ دو تو ہو جاتے ہیں، لیکن وہ سینے میں نہیں ہوتے. لیکن وہ کہاں ہوتے ہیں؟ جوف میں تو ہوتے ہیں نا. سبحان اللہ. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. سبحان اللہ. اذ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام کون سی قوم پہ بھیجے گئے تھے؟ بنی اسرائیل. عیسیٰ علیہ السلام کون سی قوم پہ بھیجے گئے تھے؟ سورۃ الصف میں دونوں کا ایک آیت کے بعد دوسرے کا ذکر ہے، پہلے موسیٰ پھر عیسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اذ قال موسیٰ لقومہ یا قومی لم تؤذوننی، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اپنی قوم سے کہا میری قوم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو. یہ موسیٰ کے الفاظ ہیں. اگلی آیت میں کس کے الفاظ آئیں گے؟ عیسیٰ کے. کس قوم سے بات کر رہے ہیں؟ اسی قوم سے جس سے موسیٰ بات کر رہے تھے، یہی بات ہے نا. یہاں کہتے ہیں یا اذ قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل، جب عیسیٰ مریم کے بیٹے نے کہا بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، ایک نے کہا میری قوم، دوسری نے کہا بنی اسرائیل، دیکھیں. اور پھر دوسرا موسیٰ کے بارے میں جب کہا تھا تو موسیٰ کے والدین کا ذکر کیا، موسیٰ ابن، کچھ کہا کہ نہیں؟ لیکن عیسیٰ کے بارے میں کیا کہا؟ اذ قال عیسیٰ ابن مریم. تو دو فرق آ گئے، ان فرقوں کو سمجھ لیں. اور یہ ایک کے بعد دوسری ہے، دونوں آیات سورۃ الصف کی ہیں. دیکھیں، کسی قوم سے ہونا اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ آپ کے والد اس قوم سے ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا میری قوم، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے والد صاحب آپ میں سے ہیں، میرے والد صاحب آپ میں سے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی یا قومی نہیں کہتے، میری قوم. کیوں؟ ان کے تو والد ہیں ہی نہیں، صرف والدہ ہے، اور والدہ سے قومیت نہیں آتی. قومیت کہاں سے آتی ہے؟ فادر سے آتی ہے. اسی لیے آپ کا لاسٹ نیم، آپ کا نام کہاں سے آتا ہے؟ آپ کی شناخت باپ سے آتی ہے. آپ مدر کس کوئی بھی ایتھنیسٹی رکھتی ہو، آپ کا جو نام ہے، ہیریٹیج ہے، وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ فادر سے آ رہی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، یا قومی کہا ہوتا تو بہت ہی غلط بات ہوتی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہاں تک کہ مریم سلام علیہ کی حرمت کو برقرار رکھا ہے ان الفاظ میں. دوسرا، یہودیوں نے نئی مزے کا ہیلا ڈالا. یہودی کہتے ہیں کہ اصل میں یہودی ہونے کے لیے، باقی قوموں کے لیے اور ہے، باقی قوموں میں سے ہونے کے لیے باپ کا اس قوم سے ہونا ضروری ہے، یہودی ہونے کے لیے ماں کا اس قوم سے ہونا ضروری ہے. یعنی ماں یہودی ہو تو تم یہودی ہو. انہوں نے نیا فارمولا نکالا. بات کی بات ہے، میں نے کہا بڑا پیارا فارمولا ہے، لیکن تم اپنے آپ کو اسرائیل کی اولاد کیوں کہتے ہو؟ باپ کے نام سے تو پکارتے ہو. اگر باپ سے ایتھنیسٹی نہیں آتی، تمہاری شناخت نہیں آتی، تو تمہاری قوم کا نام ہی باپ سے ہے، اس کی تو کوئی توقی نہیں بنتی. پھر میں نے ایک اور سوال بھی پوچھا. میں نے کہا موسیٰ، تم ربائے سے میں نے بات کی تھی، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تمہارے نزدیک بھی مدین بھاگ گئے تھے نا، مدین بھاگ گئے تھے؟ کہتے ہیں ہاں بھاگ گئے تھے، وہ بائبل میں بھی ہے. مدین عرب قوم ہے؟ کہتے ہیں ہاں عرب قوم ہے. وہاں مدین میں ان کی شادی ہو گئی تھی. شادی کس سے ہوئی تھی؟ عربی عورت سے ہوئی تھی. पे औलाद हुई उनकी, तो तुम्हारे नजदीक तो मूसा की औलाद अरब है। फिर मसला क्या है यार? तो अल्लाह ताला ने, बात असल में यह है कि असल में नाम जब इंसान लेता है ना, तो नाम अपने बाप का लेता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस औरत को, इस अजीम शान औरत को इतना मकाम दिया कि एक नबी का नाम लेने के बाद ईसा, इतना काफ़ी ना समझा कि सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाए, बल्कि कि ये कि वो मरियम के बेटे हैं उनका नाम लिया जाए ख़ास, ताकि ये बात वाजे रहे कि ये ऐसा, ये ऐसी माँ है जिसके, इस ऐसे बच्चे की माँ है जिसको बाप की ज़रूरत नहीं थी, और इसीलिए वो अपनी कौम को इस तरह नहीं बुलाता। वो कहता है या बनी इसराइल। सुभान अल्लाह, इस एक छोटी सी आयत में हमारा ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अकीदा, हमारा मरियम सलामुन अलैहा की हुर्मत के मुतालिक अकीदा, और जो मकाम अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है। किसी और नबी के बारे में आप ये नहीं देखेंगे नूह इब्न मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, नहीं देखेंगे कुरान में, नहीं नज़र आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम इब्न आपको नहीं नज़र आएगा, दाऊद इब्न नहीं नज़र आएगा, लेकिन ईसा के साथ मुख्तलिफ मकामात पर क्या नज़र आ रहा है? ईसा इब्न मरियम। तो इसमें किसको इज्जत दी जा रही है? ऐसी औरत जिसने इतनी जिल्लत का सामना किया है अपनी ज़िंदगी में कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, उसने जिस जिल्लत का सामना किया है सलामुन अलैहा, आप अंदाज़ा करो कि उस जिल्लत का सामना करने से पहले कुरान ने रिकॉर्ड कर लिया, उन्होंने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ला हादा, काश के मैं इससे पहले मर गई होती। उनके अल्फाज कुरान में, मरियम सूरह मरियम में रिकॉर्ड है। और फिर जो खुलेआम लोगों ने उनकी बेइज्जती की है, उन पर इल्ज़ाम लगाया, किसी एक ने, आपको आपसे कोई ऐसी बात कोई फ़ोन पे कर दे, कोई टेक्स्ट मैसेज पे कर दे, कोई प्राइवेटली कोने में जाके कर दे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सारे इकट्ठे होके, सारा मुसलमान मजमा इकट्ठे होके जो उनकी बेहरमती कर रहा है, तो अल्लाह ताला का इंसाफ देखें। जिस औरत ने ये तकलीफ़ और ये इम्तिहान अल्लाह की खातिर उसने बर्दाश्त किया है, उसका क़्यामत के दिन तक उसका एहतराम किया जा रहा है। सुभान अल्लाह। ईसा का नाम लेते हुए ईसा इब्न मरियम, इफ़क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल, जब भी उनकी ज़बान से या बनी इसराइल निकलता है तो उनकी माँ को सलाम है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा व सलामुन अलैहा। या ईसा इब्न मरियम, इफ़क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल। सुभान अल्लाह। मैंने ये नोट्स में डाला नहीं था, लेकिन मैं आपसे फिर भी जिक्र कर देता हूँ अपने नबी के बारे में। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, अपने रसूल का भी थोड़ा जिक्र होना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, या का लफ्ज़ समझते हैं आप? ऐ, हम ऐ तो वैसे इस्तेमाल अब नहीं करते, लेकिन जैसे आदम, आप और आपकी बीवी, किसी को पुकारने के लिए या इस्तेमाल किया जाता है, या आदम, या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, या नूह। इसके बाद ताला कहते हैं या इब्राहिम कद सद्दक्ता अर्रुया, या इब्राहिम अन्ना देना, या इब्राहिम, या नूह, या आदम, या इब्राहिम, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलाम, या ईसा इन्नी मुतवफ़ीका वराफ़िउका इलैया, या मूसा इन्नी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी, या दाऊद इन्ना जअलनाक खलीफतन फिल अर्दी। अंबिया के साथ बार बार क्या आ रहा है? या एक मरतबा कुरान में नहीं है या मुहम्मद, एक मरतबा नहीं है। जब नबी को पुकारते हैं तो कहते हैं या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दथिर, या अय्युहन नबी बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम फअंज़िर। सुभान अल्लाह, उनको नाम से ही नहीं पुकारते। अच्छा, उनको नाम से वो नहीं पुकारते जब नए बदू इस्लाम में आए, कबीले इस्लाम में आने शुरू हुए हुदैबिया के बाद, तो उनको इस्लाम की तहजीब का कुछ इल्म नहीं था। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए, कबीले के कुछ सरदार वो घर के अंदर थे, वो इंतज़ार कर रहे हैं घर के बाहर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आ रहे। वो कहते हैं या मुहम्मद उखरुज अलैना, मुहम्मद बाहर निकलिए, हमने बात करनी है। कैसे पुकारा? या मुहम्मद। अच्छा, या मुहम्मद के अल्फाज में कोई बेअदबी नहीं है असलन, क्योंकि या आदम, या इब्राहिम, या मूसा, या ईसा, वो तो कुरान ने भी इस्तेमाल किया है, لیکن جب عام مسلمان نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا یا محمد اخرج علینا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، لا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تم ایسے اس کو ان کو مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا کیا تو تمہارے سارے اعمال ہبت کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اللہ، اتنا اہتمام اللہ تعالیٰ خود نہیں کرتے اور کسی اور کو نہیں کرنے دیتے. اور پھر ان کا نام محمد، محمد جب بھی استعمال کیا ہے قرآن نے، چار مرتبہ محمد آیا ہے اور ایک دفعہ احمد آیا ہے، یہ بھی سن لیں. آل عمران میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، جہاں محمد کا لفظ آ گیا رسول بھی آ گیا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ، محمد کا نام آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. ساتھ میں سورۃ الفتح میں کہہ دیا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک مقام ہے جہاں پر رسول نہیں آیا، اور وہ کون سا مقام ہے؟ سورۃ محمد. سورۃ محمد آل عمران میں رسول کے ساتھ ذکر، احزاب میں رسول کے ساتھ ذکر، فتح میں سورۃ رسول کے ساتھ ذکر، چار مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، چوتھی دفعہ جو میں ذکر کر رہا ہوں سورۃ محمد میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم. سورۃ محمد کی آیت ہے، وہاں پر محمد کا ذکر ہے لیکن کس چیز کا ذکر نہیں ہے؟ رسول کا. کیونکہ وہاں پر ایک اور بات ہو رہی تھی، کی جائے گی اس طرح، کہہ رہے ہیں کہ جیسی تعریف وہ اللہ کی کریں گے کبھی کسی رسول نے، کسی نبی نے، بلکہ کسی انسان نے نہیں کی. اور یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے، جیسی تعریف اللہ کی اور جیسی وحی اللہ تعالیٰ نے رسول کو دی ہے نا، اس سے عظیم تعریف کسی اور کو نہیں دی گئی. اور شاید اس طرف بھی اشارہ ہے اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن ایسی تعریفیں سکھائیں گے جو کبھی کسی مخلوق کو نہیں سکھائی گئیں، اور ان کو ابھی تک نہیں سکھائی گئی تھیں، انہوں نے کہا تھا کہ سکھائی جائیں گی اس وقت. تو یہ ہے، ہو گئے احمد. لیکن دوسری طرف کہا وہ ایسی شخصیت ہے جس کی سب سے زیادہ کیا کی جائے گی، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے گی. اب اندازہ کریں عیسائی مذہب آج مسلمان مذہب سے تعداد کے اعتبار سے 2 سے 3 گنا بڑا ہے، تعداد میں وہ ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن حمد پھر بھی کس کی زیادہ ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ کریں. پھر اندازہ کریں کہ عیسائیت، کیونکہ میں نے عیسائیت کو قریب سے دیکھا ہے، امریکہ میں رہ کے میں نے عیسائیت کے بہت سارے فرقے، بہت سارے چرچز، ڈینومینیشنز دیکھی ہیں. عیسائیت کی بنیاد ہے حمد، پریز دا لارڈ، بی گریٹفل. ساری پورے مذہب کی بنیادی کیا ہے؟ حمد. اور پھر پریز جیزس، تھینک جیزس، پوری بنیاد وہ ہے. اور اس جس شخص کی غلط طریقے سے اتنی حمد کی جانی تھی، اس کی زبان سے کہلوا دیا قرآن میں کہ کوئی آ رہا ہے جس کی حمد زیادہ ہوگی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تھوڑے سے خواص تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں جو قرآن میں. تو ہمیں نعتوں کا شوق ہے، جیسی نعت، جیسی تعریف ہمارے نبی کی قرآن میں ہے نا علیہ الصلوۃ والسلام، انسان کر ہی نہیں سکتا، انسان کے لیے ممکن ہی نہیں. چلے ایک اور مثال کر لیتے ہیں بریک سے پہلے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک آیت میں کافرون، دوسری آیت میں المشرکون. کافر اور مشرق کا فرق یہاں کیوں کیا گیا؟ ایک آیت میں کافر، دوسری آیت میں مشرق. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنے منہ کی ہوا سے، پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا جتنا بھی کافر نفرت کر لیں. ولو کری حل کافرون. دوسری طرف کہا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کہ وہ تمام دین، تمام نظاموں پر حاوی ہو جائے، جتنا بھی مشرک اس سے نفرت کر لیں. ولو کریہ المشرکون. تو یہاں کافر اور مشرک کی تمیز میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں کی گئی ہیں، کچھ باتوں کا جائزہ ہم لے لیتے ہیں اکٹھے. نور روشنی کو کہتے ہیں، کفر किसको कहते हैं पता है? इनकार को ही नहीं कहते सिर्फ, कुफर अरबी में कहते हैं दफनाने को। कुफर का असल मायना अरबी में क्या है? दफनाना। जो चीज दफनाई जाती है वो अंधेरे में होती है। कहा है कि जो लोग अंधेरे में है ना, वो दुनिया को भी अंधेरे में रखना चाहते हैं, चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें, क्योंकि वो खुद किधर हैं? अंधेरे में। बोलो करी हल काफिरून, अंधेरे वाले लोग हैं काफिर। जो चीज को अंदर दफनाता है उसको काफिर कहा जाता है। बल्कि काफिर का लफ्ज पुरानी अरबी में, इस्लाम से पहले, काफिर का लफ्ज किसान के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि वो बीज को जमीन में दफनाता था, इसलिए उसको काफिर कहा जाता था। तो यहां पर जो कुफार का लफ्ज और काफिरून का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, उसमें एक मंजर बना दिखाया गया है हमें कि एक तरफ है अल्लाह का नूर और एक तरफ है उस नूर को छुपाने के लिए जो उसको दफनाना चाह रहे हैं, अपने मुंह से, अपने प्रोपेगेंडा से, अपनी बकवास से उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अब उसके अपने मीडिया को इस्तेमाल करके, अपने प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल करके, अपने चैनल्स को इस्तेमाल करके, अपनी फंडिंग को इस्तेमाल करके, अल्लाह कह रहा है अल्लाह मुतिम नूर, वो तो करके ही रहेगा, उसे तो मुकम्मल करनी है अपनी अपनी रोशनी। वो जितनी भी नफरत कर लें, उनकी नफरत से कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इस आयत में भी बहुत अजीम हिकमत पता है क्या है? कुरान अल्लाह ताला का, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुरान को नूर बताया है। अल्लाह ताला ने कुरान के बारे में कहा है फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व नूर अल्लज़ी अनज़लना, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया है। तो कुरान के औसाफ में से एक अजीम वस्फ क्या है? नूर। अनज़लना इलैकुम किताबन व नूरन मुबीना, हमने तुम पर किताब नाजिल की और बहुत वाज़ह नूर नाजिल किया। नूर, अच्छा, नूर की जो नूर का दुश्मन क्या है? तारीकी, ज़ुलुमात, है ना। ये लोग अपने मुंह से, अपने अल्फाज से ऐसे समझते हैं कि ये किसी मोमबत्ती को बुझा रहे हैं। युरीदुना लियुतफिउ नूरल्लाहि भी, तस्वीर क्या खींची जा रही है? कोई बारीक सी मोमबत्ती है, उसको वो बुझा रहे हैं। अल्लाह ने क्या मिसाल दी है? वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, जैसे सूरज निकलता है ना तो सारी चीजों पर रोशनी आ जाती है। अब अंदाजा करो, कोशिश कर रहा है ये सूरज, वलौ करी हल काफिरून, क्योंकि जो नूर अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल किया है वो तो सबको रोशन करके रहेगा, लेकिन वो रोशन फौरन होता है कि स्टेजेस में होता है? स्टेजेस में होता है। इस तरह इस नूर का इत्माम जो है वो स्टेजेस में होगा। तो इंसान को, मुसलमान को खामखा पैनिक नहीं कर, ये देखिए क्या क्या बातें कर रहे हैं इस्लाम के बारे में, अब क्या होगा, अब इसका हम कैसे जवाब देंगे, ये तो उन्होंने बहुत ही बड़ा फितना शुरू कर दिया है, अब तो ये नूर खत्म होने के खतरे में है। नो, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, वलौ करीह अल-काफिरून। और इसमें पैनिक करने के बजाय हमारा काम क्या है, हमें क्या जिम्मेदारी दी है? अल्लाह ताला ने मुसलमान को ये जिम्मेदारी दी है कि उसका सीना और उसकी जबान इस नूर को फैलाए, और जब मुसलमान इस नूर को फैलाने का काम नहीं करेगा तो अल्लाह ताला बेसिकली क्या करेगा, हमें हटा के किसी और को रख देगा जो ये काम करने के लायक होगा। हमें चुना था क्योंकि हमारे अंदर सलाहियत है, अगर उस सलाहियत का तुमने इस्तेमाल नहीं करना तो ठीक है, अल्लाह ताला यस्तब्दिल कौमन गैरकुम थुम्मा ला यकूनू अम्सालकुम, तुम्हारी जगह किसी और को रख देगा, वो तुम्हारी तरह के निकम्मे नहीं होंगे। पोटेंशियल हर एक में होता है, टैलेंट हर एक में होता है, टैलेंट का इस्तेमाल सारे नहीं करते, यही बात है ना। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अच्छा, दूसरी तरफ काफिर नहीं कहा अगली आयत में, मुशरिक कहा, उसकी क्या हिकमत हो सकती है? यहां कहा है कि अल्लाह ताला ने एक दीन दिया और उस दीन को तमाम अदियान पर जाहिर कर दिया, यानी उन पर गालिब कर दिया, और इसकी वजाहत लियुज़हिरहू, उसका इजहार करना, उसके कुछ मायने हैं, एक है गालिब करना और दूसरा कि इसका हक इतना जाहिर हो जाए कि बाकियों का बातिल भी जाहिर हो जाए, कुछ ज़ुहूर से इसका ताल्लुक भी है। तो हुआ ये कि अब लोग क्या सोचेंगे कि ये दीन तो फैल रहा है लेकिन ये भी एक मजहब है और बाकी और भी मजहब है, इनको साथ साथ चलने दो, बराबर हैसियत के हैं, जैसे इंसान सारे बराबर हैं उनके मजाहब भी बराबर हैं, कोई एक कल्चर किसी कल्चर से बेहतर नहीं है, वो ऑल इक्वल, डिवर्सिटी, यूनिवर्सिटीज में डिवर्सिटी सिखा रहे हैं ना आजकल। डिवर्सिटी में क्या है, आप ऐसे हो या वैसे हो या जैसे हो, आप सारे क्या हो, एक ही जैसे हो, आप सब बराबर हो, डाइवर्सिटी के नाम पे हक और बातिल बराबर हैं, गलत और सही बराबर है, अदब और तहजीब और जानवरपना बराबर है, और इसका नाम हमने बड़े प्यारे नाम रखे हैं, डाइवर्सिटी, राइट। अल्लाह ताला कह रहा है जितना भी ये मुशरिक होता क्या है, पता है मुशरिक क्या होता है? एक चीज को दूसरी के साथ जोड़ देना, उनको बराबर कर देना। इसीलिए बराबर करने के लिए एक और लफ्ज अरबी में है, अदल। ثم الذين كفروا بربهم يعدلون, जो लोग अल्लाह ताला पे अपने रब पर कुफर करते हैं वो चीज़ों को बराबर करते हैं, जो लोग बुतों को अल्लाह ताला से बराबर करते हैं, जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला से बराबर करते हैं, और जो और अदियान को इस्लाम से क्या करते हैं, बराबर करते हैं। ठीक है, आप भी, आपका भी है, हमारा भी है, सबका है, आपको हमारे दीन को गलत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने दीन की हक की बात इतनी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको चाहेगा वो उधर चला जाए, जिसको चाहेगा वो उधर चला जाए, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, आप जिससे भी जाके खा लो, जो दीन है जिससे भी जाके आप जो भी पूजा कर लो, हर एक अपना मस्त है। आपको इतनी ज़्यादा इस दीन के बारे में और इसके गलबे के बारे में और इसकी बात फैलाने के बारे में और इसके दलाइल पेश करने के बारे में क्या तकलीफ़ है आपको, क्या ज़रूरत है इतनी आपको? तो अल्लाह ताला कह रहा है जिन लोगों को शिर्क पसंद है ना, शिर्क सिर्फ अल्लाह में नहीं होता, शिर्क अदियान में भी होता है, सबको एक साथ रख लो, को एग्जिस्टेंस है, ये टॉलरेंस की बात है, तो उनके बारे में कहा ये जितना भी नफरत कर लें, इस दीन ने सामने ऊपर उभर कर आना ही है, और जितना ये जाहिर होगा उतना उनका बातिल सामने आ जाएगा। इसी बात से वो डरते हैं, इसी बात से वो मुखालफत करते हैं, वलौ करिहल मुशरिकून। ठीक, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या वो कुरान पर उस पर तदब्बर नहीं करते? तदब्बर कहा जाता है किसी चीज़ के पीछे देखना, दुबर पीठ को कहते हैं। इस आयत के पीछे क्या है, इसके पीछे क्या हिकमत है, एक उसका जाहिर है और उसके पीछे क्या क्या है, क्या क्या हिदायत, क्या क्या रोशनी, क्या क्या नसीहत उसके पीछे है। असल में ये पूरा कोर्स एक तरह से तदब्बर ही का कोर्स है, सारी मिसालें जो मैं आपको दे रहा हूँ वो हम तदब्बर ही की एक्सरसाइज कर रहे हैं एक तरह से। अल्लाह ताला सवाल पूछते हैं, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, और अगर किया होता तदब्बर तो कहते हैं वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह, और अगर ऐसा होता कि ये अल्लाह के अलावा किसी और से आया होता, अगर कुरान अल्लाह ताला के अलावा किसी और से आया होता, कहते हैं लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, तो ज़रूर ऐसा होता कि इसके अंदर वो बहुत सारा इख्तिलाफ पाते। कॉन्ट्रडिक्शन को क्या कहते हैं उर्दू में, तनाकुज़ात, तजाद, बहुत ज़्यादा तजाद पाते उसके अंदर, इख्तिलाफन कसीरा, यानी अगर कुरान अल्लाह ताला की तरफ से ना होता तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या होता, तजाद होता। और इस आयत में इशारा इस बात की तरफ भी है, जो तदब्बर करेगा कुरान पर उस पर यह बात पूरी तरह वाज़ह हो जाएगी कि यह अल्लाह ताला के अलावा किसी और का हो ही नहीं सकता। वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा। अजीब बात यह है, इख्तिलाफ का लफ्ज़ कुरान में बहुत दफ़ा आया है, वो इख्तिलाफ़ लैल व नहार, इख्तिलाफ का लफ्ज़ बहुत दफ़ा आया है, लेकिन इख्तिलाफन जो अरबी नहू समझते हैं ये मनसूब है और नकीरा है। इख्तिलाफन पूरे कुरान में सिर्फ एक जगह है यहाँ पर, तो लफ्ज़ी एतबार से भी अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और का होता तो इख्तिलाफन का लफ्ज़ भी कहीं और इस तरह नहीं आया, एक ही मरतबा आया है। सुभानअल्लाह, वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा।
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: इस आयत को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत मज़े की हिकमत है, ये बहुत बहुत खूबसूरत हिकमत है। इस तरह सोचें कि तीन ग्रोह हैं मुसलमानों के, ए, बी और सी, ठीक है, तीन ग्रोह हैं मुसलमानों के, और ए और बी की लड़ाई हो गई, शदीद लड़ाई होगी दोनों की। अल्लाह ताला कह रहे हैं وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, अगर ए और बी की लड़ाई हो जाए, एक दूसरे को मार कुटाई पर आ जाएं, कत्ल तक नौबत आ जाए, तो उन दोनों के दरमियान सुलह करवाओ। किससे कहा जा रहा है सुलह करवाओ, ए से या बी से या सी से? सी से कह रहे हैं कि ए को बिठाओ और बी को बिठाओ और अब सुलह कराओ। तो तीन ग्रोह हो गए, ठीक है।
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: My name is Irem. Please tune in to Inspire FM 105.1 FM.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9am to 9pm. And view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: Praising Allah subhanahu wa ta'ala for the many gifts He has given us, we recognize the gift of this day of Jumu'ah. This day about which Islam has taught us is the day of Eid in the week of a believer. And in Sahih Muslim, Abu Hurairah radiallahu anhu, he reports that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the best day upon which the sun rises is this day of Jumu'ah. On this day Allah created Adam alayhi salam. And on this day Allah entered him into Jannah. And on this day Allah removed him from Jannah. And the coming of the hour will not happen except on this day of Jumu'ah. May Allah make us from the people of Jannah when the coming of the hour arrives. Ameen.
7: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
8: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
9: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.
11: A little bit about the News and Culture Show. We talk about all the latest news from Luton, as well as art, culture and events. You can go out and have some fun in this amazing town. How are you, Paul?
12: Yeah, I can't complain. Just looking forward to Saturday. We're off on holiday and my daughter suddenly decided to join us, so she's coming for a week as well, which is nice. So it's just my son at home looking after the cat while we're gone.
11: Wonder what you're going to come back to. Is he domesticated, the cat and the son?
12: the cat, she's very domesticated. I'm working on the son. He's a work in progress.
11: Work in progress. Okay. Yeah. I'll come and auntie this weekend.
12: Yeah, congratulations.
11: Yeah. Yeah, we have another boy finally in the family because we've had a lot of girls. So finally another boy, alhamdulillah. But yeah. Right. This is a bit of a shocking story, this first one. I had no idea about it. It's obviously come out now he's been sentenced. But a Luton man has been jailed after he was caught with bomb manuals and extremist documents, including guides on how to make explosives. So,
12: yeah, he must have been under surveillance though, because he was searched. He was searched when, as he was returning from Pakistan at Gatwick Airport. So they must have had him under surveillance.
11: Yeah, they obviously did. Abdullah bin Yasser, who was 23 years old, was sentenced, I believe, this week for his. For this, His Honour Judge Anthony Leonard explained to officers from the Eastern Region Special Operations Unit, or known as ESSO, found 7 manuals on how to make explosives on his phone, with 6 of these created by an organisation linked to Islamic State, which is formerly known as ISIS. The documents included details, instructions on preparations, ingredients needed, safety tips. I mean,